ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में आज सूर्य उदय हुआ है 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:14 पर। आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी मनाया जा रहा है।

की दर्द और हित का भाव रखने वालों ने हर हालत में शीतलता बांटने का ही कार्य किया है। हमें चाहे कितने ही नफरत फैलाने वाले क्यों न मिल जाए, हमने अंगार नहीं बन जाना। हमने जलती हुई आग को थामने के लिए पानी का बरसात का रूप बनना है। हमने उस अवस्था को बनाए रखना है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार रविंदर जैन पर आधारित है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन आरजे किरनी का।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीतकार की दुनिया में जिनके संगीत ने न केवल बॉलीवुड बल्कि हमारे दिलों में भी एक अलग जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार रविंद्र जैन की, जिनकी धुनों में प्यार, भक्ति और संघर्ष की कहानियां छुपी हुई है। आज हम जानेंगे रविंद्र जैन के जीवन की उन पहलुओं के बारे में जिन्होंने उन्हें एक अमर संगीतकार बना दिया। तो आइए इस संगीत यात्रा में हमारे साथ जुड़िए।

रविंदर जैन सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे, जिनका जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता इंद्रमणि जैन थे, जो कि संस्कृत पंडित और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनकी माता किरण जैन गृहिणी थी। रविंदर जी के 6 भाई और 1 बहन थी। जब रविंदर जी का जन्म हुआ तो 1 दिन बाद ही उनकी आंखें नहीं खुली। तब डॉक्टर ने सर्जरी के जरिए उनकी आंखें खोली, लेकिन उन्हें तब भी दिखाई नहीं देती।

रविंदर जी की शुरुआती शिक्षा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल में हुई थी। 4 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनकी संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके लिए उन्हें मिनी हारमोनियम दिया। उन्होंने जीएल जैन, नथुराम शर्मा और जनार्दन शर्मा जैसे दिग्गजों से संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद रविंदर जी अपने चचेरे भाई के कहने पर कोलकाता आ गए। वहां उन्होंने 10 साल तक संगीत की आगे की शिक्षा ली। कोलकाता में ही रविंदर जी ने 5 रेडियो स्टेशन पर ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें नकार दिया गया।

रविंदर जैन को पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में 40 रुपए महीने पर मिली। इसी शहर में उनकी मुलाकात पंडित जसराज तथा पंडित मणिरत्नम से हुई। नई गायिका हेमलता से उनका परिचय हुआ। वे मिलकर बांग्ला तथा अन्य भाषाओं में धुनों की रचना करने लगे। हेमलता से नजदीकियों के चलते उन्हें ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी से ऑफर मिलने लगे। एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का मौका मिला। सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के 151 रुपये तक मिलने लगे। इसी सिलसिले में वे हरिबाई जरीवाला संजीव कुमार के संपर्क में आए। वर्ष 1968 में राधेश्याम झुनझुनवाला के साथ मुंबई आए तो पहली मुलाकात पार्श्व गायक मुकेश से हुई।

0: रविंदर जैन का पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। रविंदर जैन ने अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत 1974 में फिल्म कांच और हीरा से की, हालांकि उन्हें असली पहचान 1980 में आई फिल्म चांदनी से मिली। चांदनी का संगीत न केवल उस समय के दर्शकों के बीच हिट हुआ, बल्कि आज भी ये लोगों के दिलों में जिंदा है।
1: ओ, ओ, ठंडे ठंडे

के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था। वह संगीत के ऐसे साधक थे जिन्होंने अपनी धुनों से फिल्म की कहानी को न सिर्फ सजाया बल्कि उसे जीते जी महसूस भी कराया। 1973 में आई फिल्म सौदागर के लिए रविंदर जी ने गाने लिखे और कंपोज भी किए जिससे उन्हें पहचान मिली।

1987 में रामानंद सागर के निर्देशन में बने रामायण सीरियल ने इन्हें अमर बना दिया। रविंदर जी ने लगभग 200 फिल्मों और रामायण, श्री कृष्ण, अलिप लैला जैसे धारावाहिकों के लिए अपना संगीत दिया था।

रविंदर जैन जी ने कई हिट मूवीज और धारावाहिकों में अपने संगीत का जलवा बिखेरा। इस सूची में सौदागर, चोर मचाए शोर, चित चोर, अखियों के जरोखे से, राम तेरी गंगा मैली, हीना, विवाह एक विवाह ऐसा भी जैसे फिल्में रही। उन्हें संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक दोनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था।

रविंदर जैन का संगीत सिर्फ फिल्मी गानों तक ही सीमित नहीं था, उनके संगीत में आध्यात्मिकता की गहरी छाप थी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके भक्ति गीतों ने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गीत उनके जीवन और भक्ति के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाते थे।

उनके भक्ति गीतों में एक अद्भुत शक्ति और शांति का एहसास होता था। इन गीतों ने उन्हें न केवल बॉलीवुड में बल्कि भारतीय संगीत के दूसरे क्षेत्र में भी एक महान कलाकार के रूप में स्थापित किया। जय हनुमान साईं बाबा जैसे धारावाहिकों में अपनी आवाज भी दी थी। रविंदर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार आदि मिले थे। उन्होंने उजालों का सिलसिला नाम से उर्दू शायरी लिखी, जिसके लिए उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य समिति से साहित्य पुरस्कार मिला।

9 अक्टूबर 2015 में शरीर के कई अंग खराब होने के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। इनके लिखे और गाए हुए गीत और भजन आज भी लोगों के दिलों और दिमाग पर छाए हुए हैं। रविंद्र जी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में टैलेंट और कुछ इच्छा कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने रविंद्र सेन के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उनका संगीत, उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा और उनके अनमोल धरोहर हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रविंद्र सेन का संगीत न केवल उनके समय में बल्कि आने वाले पीढ़ियों के दिलों में भी जीवित रहेगा। आपका धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रविंदर जैन पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन दिया और प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 FM पर सामाईन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

आपने ट्यून किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपुई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में, और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर, सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz।

जानेमन, इस वीडियोस में हम फिल्में देख रहे हैं, नहीं रिव्यू करने के लिए नहीं, बल्कि एक्टिंग सीखने के लिए। और आज की फिल्म एक्ट्रेस के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहां ना कोई ड्रामेटिक एक्टिंग है ना कोई हीरोगिरी, सिर्फ दो एक्टर्स हैं और उनकी अंदर की भूख। सुधेंदु राय की फिल्म सौदागर, दो लीड एक्टर्स अमिताभ बच्चन साहब और नूतन जी, और ये फिल्म इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो पसंद किए जाए। ये फिल्म इनसे कहती है बस आप सच बोलो। अमिताभ बच्चन साहब का करैक्टर लाउड नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, हीरोइक बिल्कुल भी नहीं है, और यही सबसे बड़ा लेसन है। बच्चन साहब यहां डिजायर को चिल्ला के नहीं दिखाते, वो डिजायर को दबा के दिखाते हैं, उसे दबाकर रखते हैं। उनकी आवाज कंट्रोल्ड है, बॉडी स्टिफ है, मूवमेंट्स मिनिमल है, लेकिन अंदर अंदर एक भूख चल रही है। डिजायर को एक्टिंग में एक्सप्रेस करने का मतलब लाउड होना नहीं, कभी कभी डिजायर जितना शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। बच्चन साहब का करैक्टर प्यार नहीं करता, वो ओन करना चाहता है, और पोजीशन एक्टिंग में सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि पोजीशन डायलॉग्स या लाइन में नहीं होता, वो होता है नजरों में, पॉज में, कंट्रोल में। अगर आप पोजीशन को इमोशनली दिखा रहे हो तो आप गलत जा रहे हो। पोजीशन हमेशा इमोशन को दबा के खेला जाता है। अब बात करते हैं नूतन जी के काम की। एक बार बताऊं, ये रोल अगर किसी गलत एक्टर को दे दिया जाता ना तो वीक लग सकता था, लेकिन नूतन जी इसे वीक नहीं बनने देते। उनका करैक्टर कम बोलता है, ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करता, लेकिन वो जानती हैं कि वो क्या दे रही हैं और क्या खो रही हैं। उनकी स्ट्रेंथ नॉइज में नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ सेल्फ अवेयरनेस में है। स्ट्रॉन्ग फीमेल परफॉर्मेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता, कभी कभी रिएक्शन कम करना एक्टिंग को ज्यादा पावरफुल बना देता है। सौदागर का सबसे बड़ा लेसन यहीं से निकलता है। बच्चन साहब का करैक्टर कंट्रोल से खेलता है, नूतन जी का करैक्टर एक्सेप्टेंस से खेलता है। एक कुछ लेना चाहता है, दूसरा जानता है कि वो क्या दे रहा। बच्चन अंदर से दबा हुआ टेंशन, और नूतन जी अंदर से साफ क्लैरिटी, और दोनों बिना ड्रामेटिक सीन्स के फिल्म को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इस फिल्म में इंटिमेसी है लेकिन रोमांस नहीं है, और ये एक्टर्स के लिए बहुत एडवांस एरिया है। बच्चन साहब इंटिमेसी को कंट्रोल से खेलते हैं, नूतन इंटिमेसी को समझ के एक्सेप्ट करती है। अगर आप इंटिमेसी को रोमांस बना देते हो तो सौदागर जैसी फिल्म आपके हाथ से निकल सकती है, नहीं? अच्छा चलो अब बात करते हैं होमवर्क की। तो जरा सोचो, अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहते हो क्योंकि आप अकेला महसूस करोगे, तो उस फीलिंग को लिखो, वही फीलिंग आपको बेटर एक्टर बनाएगी। इस फिल्म को बच्चन साहब के लिए देखो, नूतन जी के लिए देखो, और सबसे ज्यादा अपने लिए देखो। और हाँ, कमेंट में लिखो कि किस एक्टर का काम आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो डिस्टर्ब करे वही एक्टर को ग्रो करता है।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: तुझ बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 90.0 FM ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ।
1: सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: रेडियो विथ स्टार FM 90।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें,

देखी। मौसम खजां के आते आते फिर रिश्ते जुड़े। तुम्हारे उदास चेहरे की तस्वीर खींची, घर की कच्ची दीवार पे सजाई, टपकती बारिश की बूंदों से बचा के रखा। तेज हवाओं के झोंकों से महफूज रखने की कोशिश भी की। सुना है तस्वीरें अक्सर बोलती है, काश ये तस्वीर आज मेरे लिए बोलती।

याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे, इस दिल का दर्द मिटाने के लिए।

इस कारवां में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे और

एहसास है जो अक्सर मेरी दहलीज पे दस्तक देकर यूं ही चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मैं जानता हूं सर्द मौसम की ठंडी हवाएं तुम्हें छूकर मेरी गली से गुजरती हैं शब रोज। मेरे अनदेखे अनसुने इन रास्तों की पहचान अब कौन कराए, जबकि इन अंधेरी राहों पे चलते चलते मैं अपनी पहचान अब

0: मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

हम तो मुसाफिर ही मंजिल की तलाश में भटकते हैं, जानते ही रास्ते दुश्वार हैं, कठिन हैं राहें, फिर भी सफर है जारी। पीड़ाओं के सहरा में कितनी जिंदगियां भटकती हैं समझना बड़ा मुश्किल है, पर समय की रफ्तार के साथ शायद इस भटके हुए मुसाफिर की तलाश खत्म हो, ताकि एक नई सुबह का आगाज हो सके।

इस मौसम में कुछ अनकही सवालात, कुछ अनसुनी बातें रह गई पीछे, शायद ये सोचकर कि हम हदे परवाज को छूने की नाकाम कोशिश करते रहे, करते रहे अपनी तमन्नाओं, अपनी आरज़ुओं का बेसब्री से इंतजार, बुलंदियों में अपनी परवाज लिए अपने आसमां को तलाशने की कोशिश करते रहे।

आशाओं और उमंगों के साथ हम अपनी परवाज लिए आपके दिलों को छूने की जुरत तो जरूर करेंगे, पर धीरे धीरे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिलों में बसती है धड़कने और धड़कने आपकी याद दिलाती हैं।

मुस्कुराती सुबह परिंदे अपनी परवाज लिए आसमां की बुलंदियों को छूने की कोशिश में मगन, मदमस्त हवाओं का झुरमुट जहां तक नजर दौड़ाए उम्मीदों के सागर उमड़ आए हैं। लहरें इन खामोश साहिलों को छूने को बेकरार हैं। यहां खुशबुओं के मेले लगे हैं। उदासी आज कहीं गुम हो गई है। तेरी उंगली पकड़कर मैं क्यों न तुम्हें इंद्रलोक की सैर कराऊं, जहां शायद अप्सराएं तुम्हारी इबादत करें, तुम्हारे बदन से लिपट जाएं और फरिश्ते दुआओं में अपने हाथ उठाएं, ताकि एक नई सुबह की शुरुआत

चलता रहा उस मोड़ तक जहां तुम मुझे तन्हा छोड़ आए थे। गर्चे ये सफर आज भी मुझे मेरे हर उस बीते लम्हे को भुलाने का हौसला देता है, मगर तुम्हारी मासूम बेबस अदाओं का एहसास कैसे भुला पाऊंगा, जबकि हमारे रिश्ते अब पिंजरों में कैद हैं। फिर भी उन रिश्तों की खुशबू हमारे दरमियान के फासलों को कम करने में हमेशा मदद करती आ रही है।

0: दोस्तों, आज का मिली जुली गीतों का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये सफ़र आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्ते।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफ़र जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: कार्यक्रम इनसे मिलिए, एपिसोड 8। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती दीपाली मल्होत्रा जी। प्रस्तुत करेंगे श्री भारत सुपो।

0: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं आज का कार्यक्रम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और हर साल एक खास थीम को एक्सेप्ट और फॉलो किया जाता है। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं एक महिला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, कई MNCs में काम करने का अनुभव भी अर्जित किया है। आइए आपको मिलाते हैं आज के आमंत्रित मेहमान से इस खास दिवस पर। आपका स्वागत अभिनंदन दीपाली मल्होत्रा जी।
1: नमस्कार सपूरी जी, अंबाला की ऑडियंस को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद आपने ये मौका दिया मुझे आज सबसे बात करने का। मैं पिछले 15 साल से IT सेक्टर में काम कर रही हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आपसे, हमने आज बहुत सारे प्रश्न करने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आज हम इस कार्यक्रम में एक दिशा दे पाए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत महत्व दिया गया है और कहा जाता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आज की नारी जो कंधे से कंधा मिला के काम करती है और अपना वजूद भी बना रही है, आप इसको कैसे देखते हैं?
1: भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा, जैसे आपने बोला, नारी को देवी की जगह दी गई है। बट जैसे जैसे साल गुजरते गए, मुझे लगता है वो नारी की जगह उसको वहाँ पे एक पेडेस्टल पे, जिसे हम कहते हैं, एक बड़े ओहदे पे बिठा के एक कोने में कर दी गई। और इसी तरह औरतें अंदर ज़्यादा रहने लग गईं, उनको कई कामों में इंक्लूड नहीं किया जाता था, बाहर की कई क्षेत्रों में उनको काम नहीं दिया जाता था। जैसे जैसे अब दुनिया आगे बढ़ रही है, शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, वैसे वैसे मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, हर जगह उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो दुनिया एक अच्छी तरफ जा रही है और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि ये मौके हम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं।
0: और मैं भी आपको अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं जो भी कार्य करती हैं आज किसी भी स्तर पर, और वो अपने आप को अच्छे से साबित भी कर रही हैं, यानी जो हमारा समाज है इसमें आने वाले दिनों में हमारी बराबरी होनी बहुत ज़रूरी है। जबकि अभी बराबरी नहीं है, पर हम उस पथ पर चल पड़े हैं और अगर हम सब लोग कोशिश करेंगे तो हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे।
1: बिल्कुल।
0: आपने कई MNCs में अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस, क्या आपके अनुभव हैं? हम जानना चाहेंगे और हमारी श्रोता भी। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप वुमन पावर को कैसे देखते हैं और कैसे आप उनको प्रेरित करेंगे?
1: मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, इसने मुझे बहुत बहुत मेरा, जिसे कहते हैं, आउटलुक, इसको ज़्यादा ब्रॉड किया है, आप कह सकते हैं। सो मैं अंबाला से ही हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पे स्कूलिंग हुई, यहीं पे इंजीनियरिंग हुई, बट इसके बाद जो मुझे मौका दिया इन कंपनीज ने अलग अलग शहरों में इंडिया के रहने का और अलग अलग देशों में ट्रैवल करने का, उससे मुझे लगता है मुझे बहुत कल्चर्स का पता चला और एक, जिसे कहते हैं, नज़रिया बहुत ब्रॉड हो गया। इन कंपनीज में और भी जो महिलाएं काम कर रही हैं, अंबाला के बहुत लोग हैं जिनकी बेटियां, बहुएं आजकल बाहर काम कर रही हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ नौकरी करने की नहीं मगर नेतृत्व वाले रोल्स, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप रोल्स, लेने की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो सिर्फ नौकरी नहीं कर रही हैं महिलाएं, एक करियर बना रही हैं, और दोनों बातों में फ़र्क है। जो आपको पसंद है आप उसमें आगे बढ़ते हैं, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाके वाला जो चीज़ है वो आज आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने को मिलता है। हमारे लीडर्स हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं, विमेन के लिए मौके दे रहे हैं, एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कॉर्पोरेट सेक्टर में आजकल, कई महिलाएं उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है जब बच्चा हो जाता है एक दो साल का, क्योंकि बच्चा देखने के लिए उनके पास हेल्प नहीं होती है कई बार घर पे। ऐसी महिलाओं के लिए रिटर्निंग मदर्स प्रोग्राम तक शुरू हो रहे हैं कई कंपनीज में, और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज में हो रहे हैं। उससे क्या है, इन औरतों को जिन्होंने करियर ब्रेक ले लिया है एक साल का, दो साल का, तीन साल का, वो वापस दोबारा आ जाती हैं और उनको फिर से थोड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो अपने आप को पीछे ना समझे बाकियों से। ये जो तीन साल का उनका गैप पड़ा है किसी महिला का, उनको थोड़ी ट्रेनिंग देके वापस शामिल कर लिया जाता है मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं महिलाओं के लिए आजकल प्राइवेट सेक्टर में।
0: ये इसलिए भी हो सकता है कि जो कार्य वो कर रही होती हैं जब वो लीव पर जाती हैं, ताकि जब वो वापस आ जाएं तो वो और ज्यादा तरीके से उस काम को अंजाम दें। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं आपसे, एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, वो ये है, क्या निजी कॉरपोरेट क्षेत्र में महिलाओं के लिए यह एक रोमांचक समय है?
1: जी हाँ बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि बहुत रोमांचक समय है। पहले एक विचारधारा होती थी जब हम बड़े हो रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना शायद महिलाओं के लिए मुश्किल है, जो घंटे लगाने पड़ते हैं वो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अच्छी सरकारी नौकरी है, बैंक की नौकरी है, या एक स्त्री शिक्षक क्यों नहीं बन जाती, स्कूल में टीचर बन जाओ, कॉलेज में टीचर बन जाओ। मेरे अपने पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं, सो मैं किसी के यहाँ वो नहीं कर रही हूँ कि टीचर होना अच्छी बात नहीं है, मगर मेरे कहने का मतलब है, एक थोड़ा सा हमें जब मैं भी बड़ी हो रही थी आइडिया दिया जाता था कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना कॉर्पोरेट सेक्टर में मुश्किल है, तो वो आज नहीं रहा। आज मुझे लगता है आजकल की लड़कियाँ महिलाएं, उनको लगता है कि हम

0: यंग लड़कियां जाके जॉब्स ले रही हैं और काम कर रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। तो मुझे लगता है बहुत रोमांचक टाइम है कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने का, और कॉरपोरेट सेक्टर की भी बहुत सपोर्ट है क्योंकि मैं अपनी कंपनी में भी काफ़ी इस चीज़ में जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और हम लोग देखते रहते कि कैसे सपोर्ट किया जाए उन औरतों को जो अलग अलग जिनको ज़रूरतें हैं, ताकि वो काम करती रहें और काम में आगे बढ़ती
1: मेरे
0: रहे।
1: मन में यही प्रश्न बन रहा था कि मैं आपसे ये पूछूं कि जब एक महिला या एक युवती नाइट शिफ्ट भी करती है तो क्या उनके जो एम्प्लॉयर हैं क्या वो इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं कि जब वो रात के 12 बजे या 1 बजे शिफ्ट खत्म करें, क्या उनको घर तक कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाती है ताकि वो सेफ घर पहुंच सके और अगले दिन फिर काम पे आ सके, या क्या उनके उस कार्यालय में रात भर रहने के लिए क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए जाते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आईटी सेक्टर में हूँ। यूजुअली आप जोड़ते हैं इस टाइप का नाइट का काम कॉल सेंटर से,
1: ठीक है,
0: मन में ये धारणा होती है, मगर इवन आईटी में हमारे कई प्रोजेक्ट्स रात तक चलते हैं। मैं खुद घर सुबह के 3 बजे भी आई हुई हूँ, 1 बजे भी आई हुई हूँ। हमारी जो कंपनी थी उस टाइम इन्फोसिस, वो हमें कैब देती थी, उसमें एक गार्ड साथ में बैठता था जिस, और हमें घर के डोर पे ड्रॉप किया जाता था। जब तक हम गेट के अंदर ना चले जाएं, वो गाड़ी भी रोक के रखते थे कि गाड़ी से उतरने तक, गेट के अंदर जाने तक, और फिर वो आ जाते थे। और इस सब की पूरी एंट्रीज होती थी कि ये एम्प्लॉई आज रात को लेट जा रही हैं। मेरी नाइट शिफ्ट नहीं थी, बट किसी दिन एक्स्ट्रा काम के लिए रुकना पड़ता था। सो इसी तरह और कंपनीज भी पूरा ध्यान रखती हैं। जब मैं एयर ट्रैवल करती थी TCS में, तो 8 बजे के बाद अगर मेरी फ्लाइट पहुंच रही है तो कंपनी कैब मुझे लेने आती थी। पुरुषों को नहीं, वो अपनी टैक्सी करते थे, बट मान लिया जाता था कि कंपनी से कैब आ रही है तो ज्यादा सेफ है, तो इसलिए औरतों के लिए 8 बजे के बाद। तो ये कुछ कुछ मुझे लगता है पॉलिसीज कंपनीज ने करी हुई हैं ताकि औरतें सेफ फील करें, वो बिल्कुल वैसे ही काम कर सके जैसे पुरुष करते हैं कंपनीज में।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये हमारे समाज के लिए एक आई ओपनर है, और हमारी जो देश की युवतियां हैं या महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छे माहौल में जाके अपना कार्य कर सकती हैं। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं उनको इस वार्तालाप से बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, जो एक ऐसी दुनिया की मांग करती है जहां हर किसी की रिस्पेक्ट हो और वैल्यू भी हो। आपने अपने कार्यकाल में 5 कॉन्टिनेंट्स में लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशंस की है, कैसे इस साल के थीम को सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है?
0: जी हाँ, मैं बड़े सालों से इस तरफ काम कर रही हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसमें हम देखें कि कैसे हम महिलाओं का इंक्लूजन, जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन यानी सम्मिलित करना उन्हें हर काम में, उस पर हम ध्यान दे सके। इससे रिलेटेड बहुत अच्छी बात है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम भी यही है, इंस्पायर इंक्लूजन, मतलब कि हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि महिलाओं को हम सम्मिलित करें, हम आर्थिक तरीके से उन्हें सम्मिलित करें, हम शिक्षा में उनको सम्मिलित करें, हम उनको उनकी सेहत रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, महिला रिलेटेड कोई सेहत के इश्यूज़ हैं, बीमारियां हैं, उसमें हम उन्हें वो मौका भी दें, तो कई तरह से उन्हें हम सम्मिलित करें,
1: या एक ऐसा वातावरण दिया जा सके जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं
0: बिल्कुल कर सके। और इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जिसपे मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूंगी अभी आपको। हम औरतों को जॉब्स पे रख तो लेते हैं, मगर क्या जो मेन काम है जिनमें डिसीजन करना है बिजनेस के बढ़ावे का, या कोई बड़ी इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी जॉब की देनी है, क्या हम अपने मन में ये सोचते हैं कि ये काम पुरुष को ही दिया जाए, ये लेडी पता नहीं कर पाएगी कि नहीं? सो इस विचारधारा से आगे बढ़ के महिलाओं को हर काम में सम्मिलित करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि इस रेडियो प्रोग्राम में आपके यहाँ तो महिलाएं हैं, मुझे पता है जो काम करती हैं, मगर ऐसा सोच लीजिए कि आपको एक नया प्रोग्राम लॉन्च करना है 90s के गीत, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा ये, और उसकी आप एक टीम बना रहे हैं, 3 लोग की टीम तो क्या आप सोचते हैं मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट काम है ये, और इसमें मैं, ये मेरे पुरुष लोग बड़े अच्छे से कर लेंगे? बट आप ये देखिए कि

0: उसकी कैपेबिलिटी क्या है इंसान की, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, और आप वैसी टीम बनाएं। और एक और अच्छी बात ये है, अगर एक टीम में जैसे ये तीन लोग की टीम हमने बोली जो प्रोग्राम बनाएगी, इसमें पुरुष और महिला होंगे तो महिलाएं महिलाओं का जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव लेके आएंगी, पुरुष पुरुष की तरफ से पर्सपेक्टिव लेके आएंगे। सो वो जो एक आपका पर्सपेक्टिव ही बढ़ गया, जो आज तक दुनिया चल रही थी क्योंकि ज्यादा पुरुष ही काम कर रहे थे उन्हीं का पर्सपेक्टिव चलता था, अब महिलाओं के हर काम में आने से ये चीज पे बहुत हमारे इन्फ्लुएंस हुआ है मैं कहूंगी, और इससे हर काम बेटर हो सकता है।
1: मुझे खुशी है इस बात की कि आपने एक ऐसा इशू जो है वो डिस्कस किया है, उसके संदर्भ में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि FM 90.0 पर जितने भी विमेन सेंट्रिक कार्यक्रम हम बना रहे हैं या जो बना चुके हैं, उसमें एक कार्यक्रम है नारी एक दर्पण या और भी अन्य कार्यक्रम है, और वो हमारी जो स्टूडियो में महिलाएं हैं या युवती हैं वो ही उन प्रोग्राम्स को करती हैं, और वो क्योंकि वो उस दृष्टिकोण से शायद और अच्छे से समझ पाती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और भारत सरकार की भी ऐसी नीति है कि जब भी कोई भी कार्यस्थल जो कि खास करके भारत सरकार के अधीन है, वहां पर जो काम करने वाले हैं वो महिलाएं ज्यादा हों।
0: इस बात पे मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, बिकॉज आपकी शुरुआत और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं मैं कहूंगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। श्रोता हमारी बात सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज किया जाए, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में संगीत कितना मायने रखता है।
0: संगीत मुझे लगता है बहुत अच्छा मायने रखता है, क्योंकि बचपन से हमारे घर में रफ़ी साहब के गाने, किशोर कुमार के गाने चला करते थे, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक़ है सुनने का। हम बड़े हुए तो हमने अपने युग के गाने सुने, इंग्लिश गाने भी सुने, पंजाबी भी सुने, हिंदी बॉलीवुड तो सुने ही सुने तो बिल्कुल बहुत तरह के सुनती हूँ।
1: मैं चाहता हूँ कि आपका कोई मनपसंद गीत हो जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाएं, और अगर आप उस गीत को गुनगुना भी सकें तो श्रोताओं के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। कौन सा गाना आप इस समय श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: मैं एक मेरे बचपन का पसंद था मुझे गाना वो सुनाना चाहूंगी, पुराना गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और क्यों पसंद था ये भी बताना चाहूंगी। इसमें माउथ ऑर्गन यूज हुआ है इस सॉन्ग में, और वो बड़ा यूनिक मुझे लगता था बिकॉज और सॉन्ग से बिल्कुल अलग था ये गाना, इसलिए मेरी कुछ यादें हैं, मुझे उस टाइम बहुत पसंद था जब मैं एक छोटी बच्ची थी, तो वही मैं आप ऑडियंस को आज सुनाना चाहूंगी। एक लाइन सुना देती हूँ आपके कहने पे
1: जी।
0: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,

0: स्वागत आपका ब्रेक के बाद दीपाली जी। दीपाली जी आप मार्गदर्शक हैं सोसाइटी फॉर साइबर अवर सिक्योरिटी काउंसिल, कृपया विस्तार से बताएं हमारी श्रोताओं को और क्या ये सही दिशा है महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए।
1: जी हाँ सपोरी जी, पिछले 8 साल से मैं हैदराबाद में रह रही हूँ अपने पति और बच्चों के साथ। हैदराबाद में एक ये इनिशिएटिव है तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस स्पेसिफिकली, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इसका नाम है सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल। इस सोसाइटी का काम है कि वॉलंटियर्स उठाना, पढ़े लिखे वॉलंटियर्स समाज में से। ये वॉलंटियर्स मेरे जैसे लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है 2 महीने तक। हमें बताया जाता है कई लॉस के बारे में जो कानून है, आईपीसी की धाराएं हैं महिलाओं की हेल्प के लिए, बच्चों की हेल्प के लिए। और हमें बताया जाता है कैसे गाइड करें, काउंसलिंग करें उन महिलाओं की जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान है, या डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या सेक्सुअल हरासमेंट मोलेस्टेशन के केसेस हैं, या फिर इवन साइबर फ्रॉड्स विमेन के साथ बहुत हुए हैं तेलंगाना में भी, इंडिया में भी। सो इस तरह की कई चीज़ें कवर करके 2 महीने हमें ट्रेन किया जाता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस आते हैं सेशंस लेने। और हमारा काम ये है कि अगर समाज में कोई महिला है, उनके साथ ये हो रहा है बुरा, एकदम से वो पुलिस के पास नहीं जाती हैं, उन्हें किसी का सहारा चाहिए कि कोई उन्हें गाइड करे। सबसे पहले उनकी बात सुने और उन्हें गाइड करे। और पुलिस, वकील, इन सब से लोग डरते हैं शुरू में उनसे बात करने में। तो अगर हमें किसी केस का पता चलता है, जैसे मेरे पड़ोसी थे, उनकी कोई जानने वाली थी, डॉक्टर थी लेडी, उनका केस पता चला, उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया और मैंने उनकी पूरी बात सुनकर उन्हें आगे क्या कर सकते हैं, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। सो वहाँ ये जो सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल है, पुलिस के साथ मिलके भरोसा सेंटर है या काउंसलिंग सेंटर्स उन्होंने सेटअप किए हुए हैं, ताकि जिसके घर में प्रॉब्लम है उनकी फैमिलीज को बुला के काउंसलिंग की जाती है। पहले बहुत महीनों तक ट्राई किया जाता है कि जो घर की प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करें,
0: ठीक
1: है, ना कि तलाक करा दें
0: जी,
1: हस्बैंड वाइफ की अगर प्रॉब्लम है तो। सो सारे चाहते हैं कि अच्छा ही कुछ निकले पूरी बातचीत में से। अगर नहीं हो पाता तो फिर उन्हें वकील से कनेक्ट करते हैं, अगर बिल्कुल ही केस खराब है तो। सो इस तरह से उनकी हेल्प रहती है और ये सब गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है। सो महिलाओं को, और एकदम अगर उन पे कुछ अत्याचार करा जा रहा है घर पे, उन्हें घर छोड़ना है तो वो कहाँ जाएं? कई बार माँ बाप की सपोर्ट नहीं होती इन केसेस में। बहुत केसेस में मैं कहूंगी ऐसे हमें पता चले हैं, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं शादी के बाद।
0: यानी कि जो ये वॉलंटियर्स है, ये एक तरीके से पुलिस के मार्गदर्शन में लोगों को सचेत करते हैं, उनको दिशा देते हैं, ताकि वो अपने हक के लिए भी बात कर सके और उसमें उन महिलाओं का उत्थान भी होगा और खास करके उनके साथ जो जुड़े बच्चे भी हैं। तो क्या मैंने सही समझा?
1: बिल्कुल सही समझा। और जैसे मैंने कहा, कोई महिला को एकदम से घर छोड़ना है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन आ गया, उसे अपनी जान पे खतरा लग रहा है, बच्चे की जान पे खतरा लग रहा है, सो भरोसा सेंटर होगा वहां है बने हुए हैदराबाद में, वो वहां जाके रह सकती हैं कुछ दिन तक, जब तक कि अगला वो क्या करें वो सोचती हैं। सो मगर इन बातों का पता नहीं होता, या अगर आप न्यूज में भी पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें नई जरूरत। मगर मार्गदर्शक जो अब फैले हुए हैं पूरे शहर में, वो समाज में ये बातों का बताते हैं लोगों को जो पीड़ित महिलाएं हैं, और उनको हेल्प करते हैं। और इससे बहुत, एक आप मानेंगे नहीं कि कई महिलाएं जो आत्महत्या करने पे आ जाती हैं, उन्होंने बाद में बोला है कि हम आत्महत्या नहीं की क्योंकि उस टाइम किसी ने हमारी बात सुनी और हमें हेल्प किया। सो बहुत बहुत ये मुझे लगता है शक्ति देता है महिलाओं को, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मुझे लगता है पूरे इंडिया में इस टाइप का प्रोग्राम पुलिस के साथ पार्टनरशिप में होना चाहिए।
0: मैं आपको बधाई देता हूँ, और खास करके आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हुए आप सोशल वर्क भी करती हैं, और जो आपको विरासत में मिला है, जो आपके पिताजी डॉक्टर वी के मल्होत्रा जी हमेशा लोगों के लिए रहते हैं और वो उनके मदद के लिए सामने आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपने एक चीज और भी सिद्ध की कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं और साथ के साथ आप अपने जो आपके इंस्टीट्यूट है जहां आप काम करते हैं और उनका भी आप काम करते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न मैं और करना चाहूंगा, महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण क्या है?
1: जी हाँ, हम सोचते हैं सपूरी जी कि एक महिला ने नौकरी कर ली या अपना बिजनेस कर लिया तो ठीक है, उसने पैसे कमा लिए, बट ये जो हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं ये मुझे लगता है तभी आती है जब जो पैसा महिला कमा के ला रही है उसे क्या वो अपने हिसाब से खर्च पा रही है, फैसला उसका है या परिवार का है। अब मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार की तरफ खर्चा कंट्रीब्यूट करने में, बच्चों के ऊपर खर्चने में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस खर्चों के बावजूद क्या औरत अपना डिसीजन ले पा रही है कि वो अपना पैसा पर्सनल सेविंग कहाँ करे, क्या वो सेव कर भी पा रही है अपने लिए या वो ज्वाइंट अकाउंट में सेव कर रही है। अभी भी हमें इंडिया में कई केसेस सुनने में आते हैं जिसमें औरत कमाती है और सारा पैसा आके पकड़ा देती है अपने हस्बैंड को, मोस्टली हस्बैंड को ही, और कोई बुरी बात नहीं है कि वो डिसाइड करे, आपको हेल्प करें डिसाइड करने में, मगर अगर आप पढ़े लिखे हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करें। मुझे लगता है जब लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है उन्हें साथ में ये बताना भी चाहिए कि ये पैसे को आपको मैनेज करना भी आना चाहिए। अब आपने कमा तो लिया, आपको सेव भी करना है, आपको अपनी टैक्स फाइल भी करना है, आपको ये भी सोचना है कितना खर्चना है कितना सेव करना है, ठीक है,
0: ताकि आने वाले दिनों की जरूरत भी पूरी
1: हो सके। बिल्कुल, और इसमें आप बिल्कुल आप सलाह मशवरा कीजिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके करना है आप करिए, मगर डिसीजन औरत के अगर हाथ में है तो ही वो एम्पावर्ड है। मगर एक क्लॉज मैं ऐड कर दूं यहाँ, इसका ये मतलब मत लीजिए कि मैं अभी जाऊं और पैसे जो है कला मंदिर या जारा पे खर्च कराऊं। तो कई बार हम ये मतलब ले लेते हैं कि महिलाओं के हाथ में पैसा होगा तो सारा कपड़ों पे चला जाएगा। तो ठीक है, हर महिला को अपनी पसंद की चीजें खरीदने का अधिकार है, मगर यही विजडम है कि हम अपनी जितना भी फाइनेंशियल डिसीजन है अगर वो महिला के हाथ में है तभी वो पूरी तरह एम्पावर्ड है।
0: यानी कि एक महिला आर्थिक तौर से सशक्त तब हो सकती है जब कोई भी फैसला लिया जाए उसमें उनका श्रेय होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और एक यहाँ पे मैं लाइन ऐड करूंगी, जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि पुरुष उन्हें ये नहीं करने दे रहे इसलिए वो बिचारी महिलाएं नहीं कर पा रही। यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी बात, और मैं कई कई जगह पे जब वुमेन रिलेटेड बातें करती हूँ मैं हमेशा मानती हूँ कि पुरुष हमारे साथी होते हैं, और मुझे बहुत केसेस में लगता है कि गलत नहीं होते हैं वो, कई बार महिलाएं ही ये नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने बोला कि महिला अगर वो पढ़ी लिखी हैं क्या वो ये कर रही हैं, या हमेशा ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदमी पे डाल दी जाती हैं, अच्छा अपनी टैक्स फाइल कर रहे हो मेरी भी कर देना। महिलाओं को ये खुद करना है, ये करने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, और वो भी महिलाओं को अपने लिए निकालनी है और तभी वो पूरी तरह से मुझे लगता है एम्पावर्ड हो सकती हैं।
0: मैं आपको एक इसी स्टूडियो का एक उदाहरण देता हूं। जब कभी मैं या टीम मेंबर यहाँ पे नहीं होते हैं तो जो हमारी संस्था है, जो उसकी अध्यक्ष है, वो मेरी धर्मपत्नी है, और मेरी एब्सेंस में या टीम की एब्सेंस में वो मॉर्निंग में उठ के ये सारे सिस्टम्स ऑन करके रेडियो को सही समय पर सुचारू रूप से शुरू करती हैं। तो हमें सिर्फ एक ये काम करना पड़ेगा, पुरुषों को भरोसा रखना पड़ेगा अपने परिवार पर, और परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं या किसी ऑफिस में, अगर हम उन पर विश्वास रख सकेंगे तो वो भी उतना ही काम कर सकेंगे जितना हम करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक महिला होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, और क्या निवारण है जब आप कार्यस्थल पर होते हैं। आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्टिवली एंगेज्ड हैं अवेयरनेस के लिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही हैं महिलाओं को
0: जी,
1: मगर ये भी जरूरी है अगर एक महिला एम्प्लॉई है किसी भी कंपनी में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, मुझे लगता है आपको अपने काम के प्रति जैसे कहते हैं ट्रूथफुल हम कहते हैं, या बिल्कुल आपको भी दिखाना है कि मैं ये जिम्मेदारी ले सकती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम उस युग में से निकल रहे हैं जब हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती जा रही हैं, सो बहुत अच्छा, बहुत रोमांचक टाइम है जिसे हम बात कर रहे थे, मगर इसके साथ साथ हर मोड़ पर एक महिला को फिर भी ये विश्वास दिलाए रखना है अपने ऑफिस में भी कि हम भी ये काम कर सकते हैं। आप कई बार हम ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि हमें अपने आप काम मिलेगा, कुछ तो हम करेंगे, या कुछ बहुत अच्छा यू नो टीम वर्क होने लगा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो रहा है, तो आप मांगिए कि मुझे भी इसका हिस्सा बनाइए। एक तो ये बात है, कई बार हम लोग चुप होके पीछे बैठ जाते हैं तो उसमें भी हमें इंक्लूजन जो हम बात कर रहे थे सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर फिर भी आपको किसी टाइम पे ऐसा लगे कि आपके लिए कुछ सेफ नहीं है तो बोलिए, उसे करिए मत,
0: बात करिए,
1: बात करिए, आवाज उठाइए, और बहुत हद तक मैं कहूंगी वो बात का सोल्यूशन निकलेगा, आपको हेल्प की जाएगी, मगर आप चुप रह जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, और आपके मन में भी ये होगा कि मैं ये करूं कि ना करूं, मैं लेट ट्रैवल करूं कि ना करूं, मैं मुझे ये अगर हेल्प करें तो मैं कर लूंगी, अगर कोई मुझे आश्वासन दे दे कि हाँ जैसे मैंने बताया कि कंपनी कैब आएगी तो मैं कर लूंगी ट्रैवल, सो वो सब आप बात करके खोलें, अपने से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए हेल्प आप मांगे,
0: और तभी उसका समाधान मिल पाएगा।
1: बिल्कुल। और तीसरा, जैसे एक एग्जांपल ही है, आजकल मेंस्ट्रुअल लीव की बात भी करी जा रही थी कि मैटरनिटी लीव तो होती है जब बच्चा हो तो माओ को, आजकल गवर्नमेंट का भी वो है पॉलिसी है कि आपको देनी ही देनी है 6 मंथ्स की लीव, तो बात ये थी कि मेंस्ट्रुअल लीव के टाइम हर महीने अगर कॉरपोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर देने लग जाए तो प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है क्योंकि लोग कम हो जाएंगे काम करने के लिए
0: जी।
1: तो उस पे भी बात चल रही है और कई पहलू हैं, थोड़ा मुश्किल है इसको करना, अगर आप देखें आसान नहीं है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, मगर मुझे लगता है जहां चुनौती होती है वहां कुछ
0: रास्ता भी निकल
1: रास्ते तो निकलते ही हैं, तो वो रास्ता जरूर निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा शायद, और हम फिर शायद अगली टॉक शो में उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे।
0: बट मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार भी इस समय इन विषयों पर बहुत दिल से बात कर रही है, और मैं ये आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जहां इतनी सुविधाएं महिलाओं के लिए इस समय कार्य क्षेत्र में है तो ये भी लागू हो सकता है, चाहे उसके दिन कम हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हम एक बार फिर संगीत की तरफ जुड़ते हैं, और जैसे हमने अभी बात की थी कि आपकी जिंदगी में संगीत का एक बड़ा स्थान है, तो एक बार फिर हमारे पास गुंजाइश है कि हम आपसे एक और गाने की फरमाइश करें, और आप ये बताएं कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, या कोई और गजल हो या गीत हो, ताकि हम श्रोताओं को सुनाएं।
1: जी हाँ सपूरी जी, गीत तो मैं सुनती ही हूँ, उसके साथ साथ मैं पिछले कुछ सालों से गुरबानी से भी जुड़ी हुई हूँ और पाठ करती हूँ, शब्द सुनती हूँ, सो मैं चाहूँगी आप अपने ऑडियंस को आज सुनाएं मूल मंत्र जो कि है एक ओंकार सतनाम।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं दीपाली जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं।
1: मुझे मधुबनी आर्ट का शौक है। ये आर्ट फॉर्म बिहार साइड से है और ये तब की जाती थी श्री रामचंद्र और सीता जी के युग में, माना जाता है कि तब से शुरू हुई हुई है ये आर्ट फॉर्म। बड़ी बारीक पेन से या कलम से की जाती है। सो ये आर्ट फॉर्म का शौक है और इसी से मिलता जुलता एक मंडाला आर्ट होता है, वो भी मुझे शौक है करने का।
0: यानी आप कॉरपोरेट जगत में काम करने के साथ साथ आप महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए भी काम करती हैं और साथ में आप एक आर्टिस्टिक नेचर की भी हैं और मधुबनी आर्ट आपको बहुत पसंद है। आप एक कामयाब प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक माँ भी है दो बच्चियों की, घर गृहस्थी और प्रोफेशन में बैलेंस कैसे बनाती हैं आप? इस साल का वुमेन्स डे का थीम आप अपनी जिंदगी में कैसे देखते हैं?
1: बैलेंस की बात हम कई बार करते हैं, बैलेंस बिल्कुल काम में और हमारी पर्सनल लाइफ में, मगर मैं बता दूं सुपोरी जी, बैलेंस रोज 50-50 नहीं होता है। किसी दिन 90% काम होता है और 10% घर होता है और किसी दिन 80% घर और 20% काम पे भी चल जाता है
0: जी।
1: तो ये जो एक 50-50 मुझे लगता है, औरत कोई भी महिला अपने आप को इस प्रेशर में ना डाले क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ 50-50 पे कभी नहीं चलती है। मगर हाँ, जब आप देख सकें जिस भी समय आप जिस तरह से उसको बैलेंस करना चाहें, और हर घर की अलग कहानी होती है, मगर ज़रूर करें। और दूसरी बात, अपने लिए समय ज़रूर निकालें, चाहे आप कामकाजी महिला हैं चाहे आप घर पे रहने वाली महिला हैं, आप दोनों, हर महिला को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए जिसमें जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। उससे आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, आपको लगेगा कि जैसे ये मेरा टाइम है, मेरे फैमिली का नहीं है, बच्चों का नहीं है, हस्बैंड का नहीं है, काम का नहीं है,
0: वो एक्सक्लूसिवली आपका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर आप करेंगे तो।
0: मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता, खास करके जो महिला श्रोता है, उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि आप जितना भी कार्य घर में करती हैं तो आप अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि क्या उच्च शिक्षित और पेशेवर कामकाजी महिलाएं घरेलू हिंसा से सुरक्षित हैं?
1: हम हमेशा सोचते हैं कि कोई महिला अगर पीड़ित है तो ऐसे घर में होगी जहां गरीब घर होगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसीलिए इस तरह के काम करते होंगे
0: जी।
1: मगर जब से मैं मार्गदर्शक ग्रुप के साथ जुड़ी, हमें बड़े केसेस ऐसे बताए गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताए और मैंने भी जो केसेस हैंडल किए वो बिल्कुल सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर महिलाओं के घरों में हुई हैं। वो डॉक्टर हैं, वो अकाउंटेंट हैं, वो खुद वकील हैं, मगर फिर भी वो पीड़ित हुई हैं किसी ना किसी वजह से। सो ये नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये किसी भी इकोनॉमिक क्लास में हो सकती है, महिलाओं के अब्यूज जिसे हम कहते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, मेंटल अब्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल अब्यूज हो सकता है, जहां इवन उनके कमाए हुए पैसे भी उन्हें नहीं दिए जाते, बच्चों के लिए खर्चने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। सो ये हर हर इकोनॉमिक क्लास में हो रहा है। इनफैक्ट जितने ऊपर के आपके मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं वो और ज्यादा कम उसको पुलिस में रिपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको बहुत शर्म होती है कि अगर पुलिस केस बन गया सोसाइटी में इज्जत खराब हो जाएगी। ना वो महिला रिपोर्ट करती है ना फैमिलीज रिपोर्ट करती हैं। तो कोई कोई महिला ऐसा भी कह सकते हैं कि पढ़ाई या आपका जो डिग्री है वो ये नहीं श्योरिटी देगी कि आप सेफ हैं कि नहीं हैं। बट हाँ, अगर आप खुद जागरूक हैं, आपको पता है आपके राइट्स क्या हैं, सरकार आपको क्या राइट्स दे रही है, और आप अपना मन मजबूत करके अपने बच्चे की रक्षा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो माएँ हम देखते हैं ऐसे केसेस में, बच्चों की रक्षा करना ज़रूरी है, अपनी रक्षा करना ज़रूरी है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कमा सकते हैं, इसीलिए सिर्फ शिक्षा नहीं, शायद हमें ये जो मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं ये भी बच्चों को शुरू से देनी चाहिए।
0: यानी सकारात्मकता जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: आप आज महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी, अगर आप एक महिला हैं तो आप दूसरी महिला को सपोर्ट करें
0: जी,
1: गलत चीज में नहीं सही चीज में सपोर्ट करें
0: जी।
1: अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उनको उनका सहारा बने बनने के लिए, और अगर आप पुरुष हैं तो आप भरोसा रखें कि आपके आसपास जो महिलाएं हैं वो आपको हेल्प भी कर सकती हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं और शायद आपका काम आसान कर सकती हैं बहुत जगहें। तो बस एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे पे भरोसा रखिए, यही मैं आज का मैसेज देना चाहूंगी।
0: आपको यहाँ अंबाला कैंट के FM 90.0 स्टूडियो में आके कैसा लगा?
1: अंबाला से मेरी जड़ें बिल्कुल पक्की जुड़ी हुई हैं, चाहे मैं और शहरों देशों में भी रही हूँ, तो मुझे तो आज बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और ये बहुत बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा अपना अंबाला का रेडियो स्टेशन है, और मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, ऑडियंस से बात करने का मौका दिया। तो मैं तो अपने आप को स्मॉल टाउन गर्ल ही मानती हूँ, यही हमें जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं बोला जाता है, तो बिल्कुल बड़े खुश हैं हम स्मॉल टाउन गर्ल होके, और आपको बहुत सारी मेरी तरफ से बधाई, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स, खास करके डॉक्टर वीके मल्होत्रा जी, हमारे मार्गदर्शक भी है और साथ में हमारे सबसे बड़े श्रोता भी हैं। वो हमें फीडबैक भी देते रहते हैं कि इस काम को अगर ऐसे करें तो शायद लोग उनको ज़्यादा पसंद आएगा, और हमें खुशी है कि उसी परिवार से एक और सदस्य, रेडियो वितस्ता परिवार की सदस्य आज बनी है, और आपने आज बहुत सारी जानकारी दी महिलाओं के लिए, ताकि जो काम आप कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसको हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ और उनको सचेत करें, उनको एक रास्ता दिखाएं, उनको एक दिशा दे पाएं। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाला, आप यहाँ पे आए और अपने बात रखी, और खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए, और वो भी आज के खास दिवस पर जो कि इंटरनेशनल विमेंस डे है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद सपोरी जी मुझे ये मौका देने के लिए आज बात करने का, और इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं, और सभी महिलाओं के साथ जुड़े पुरुषों को भी शुभकामनाएं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारा सहारा बनते हैं, और अंबाला की ऑडियंस को मेरा प्यार भरा गुड बाय।
0: दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
2: छूकर मेरे मन को

सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 8। हमारे आज के मेहमान थे दीपाली मल्होत्रा जी, निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेश।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सुपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में

0: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मेहरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है,

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो हितसत्ता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तोइचो बोजान 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हंद।

0: हवाओं के रुख पर जो बिखर जाए वो खुशबू है, दिलों को जो आपस में जोड़ दे वो गुफ्तगू है, आपकी पसंद, आपकी यादें और हमारी आवाज, इसी हसीन सिलसिले का नाम आपकी फरमाइश का जादू है। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता सुनने वाले हमारे सभी अजीज और प्यारे श्रोताओं को भारत सोपोरी का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह।
1: और मेरी यानी कृष्णा की तरफ से भी आप सभी को एक बेहद खूबसूरत और सुहानी शाम दोस्तों। रेडियो वितस्ता के इस बेहद खास और आप सभी के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और खैर मकदम भी।
0: कृष्णा, सच कहूँ तो इस प्रोग्राम का इंतजार जितना हमारे दोस्तों को होता है उससे कहीं ज्यादा बेसब्री से हमें हमारे श्रोताओं की फरमाइशों का इंतजार रहता है, क्योंकि ये फरमाइशें हमारे लिए सिर्फ चंद गानों की लिस्ट नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा भरत जी आपने, हम यहाँ आपको महज एक गाना नहीं सुनाते। जब आप अपनी पसंद का कोई गीत हम तक भेजते हैं तो हम उसके पीछे छुपी आपकी भावनाओं को, आपके एहसासों को और आपकी यादों को महसूस करते हैं और महसूस कराते हैं।
0: यही तो रेडियो की जादुई ताकत है दोस्तों। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये गीत और आपके जज्बात हम इन आवाज की तरंगों के जरिए तमाम सरहदों और सीमाओं के पार भेज देते हैं। कोई भी सीमा इन तरंगों को बांध नहीं सकती।
1: तो बस अपने दिल के तार जोड़ लीजिए और तैयार हो जाइए यादों के इस हसीन सफर पर चलने के लिए। भरत जी, क्यों ना फिर पहली फरमाइश के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए।
0: यकीनन कृष्णा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी फरमाइश का खूबसूरत सिलसिला इस पहले नगमे के साथ।

0: उम्मीद है आप सभी को ये फरमाइशी गीत पसंद आया होगा। इस गीत की फरमाइश आई थी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता थे निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये गीत था फिल्म खिलौना से। गीत के बोल थे हम जानते हैं तुम हमें। इस गीत को अपनी आवाज से सवारा था अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने। भरत जी, अगली फरमाइश कहाँ से आई है?
1: अगली फरमाइश हमारे पास अम्बाला कैंट से आई है और भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है बलविंदर सिंह, कर्नल HS कौशल और इनके सभी दोस्त। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आखिरी दांव से गीत। गीत के बोल है तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। पेश है इन सभी का ये फरमाइशी नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुंबई से। भेजने वाले श्रोता हैं दिलीप, गीता, चीकू, निन्नी, आकाश और मंजू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अब्दुल्ला का गीत। गीत के बोल हैं, मैंने पूछा चांद से, इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश का ये गीत।

हम सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से भेजने वाली श्रोता है विनय मोहन खारवान। ये सुनना चाहते हैं फिल्म गाइड से गीत, गीत के बोल है दिन ढल जाए। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। विनय मोहन खारवान के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी, पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं एक हरियाणवी गीत जिसके बोल है, जीजा तू काला मैं गोरी गनी। ये फिल्म चंद्रावल से लिया गया है और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजे वाले श्रोता है बंसीलाल संधू। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, पवनीत कौर और सारा संधू परिवार। और ये लिखते हैं भारत भाई जी को मीठी मीठी प्यारी राम राम। और साथ में लिखते हैं आपकी बोली मिस्री से भी मीठी है। बंसीलाल संधू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी जब हमें हमारे कार्यक्रम के बारे में, हमारी आवाज के बारे में बोलते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। और साथ में हम सभी की ओर से, टीम रेडियो विदस्ता की ओर से आपको और आपके परिवार को मीठी मीठी और प्यारी प्यारी राम राम। सुनते हैं बंसीलाल संधू जी का ये पसंदीदा हरियाणवी नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है दयालबाग अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं अनिल और हनी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश का गीत। गीत के बोल हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इस गीत को अपनी आवाज से सवारा है लता मंगेशकर ने। तो दीजिए पेश है इनकी फरमाइश का ये मधुर सा गीत।

तो पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दोस्ती का गीत। गीत के बोल हैं, मेरा तो जो भी कदम है। इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी सर ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

आप सभी सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। कार्यक्रम आपकी फरमाइश जारी है। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी कोई फरमाइश हमें भेजना चाहते हैं, आपको फरमाइश भेजनी होगी पुरानी हिंदी फिल्म से या हरियाणवी या पंजाबी गीत के लिए। आप हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फरमाइश भेजें गीत के बोल के साथ, और साथ में लिखें अपना नाम, कहां से आप लिख रहे हैं, और अगर आपके साथ अन्य परिवारजन या आपके दोस्त सुनना चाहते हैं आप उनके भी नाम स्पष्ट लिखिए। आप भेजिए अपनी फरमाइश हमारे नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेते हैं एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है PS नहावकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जुदाई का गीत। गीत के बोल है मार गई मुझे तेरी जुदाई। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार ने। PS नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। आइए प्रस्तुत है इन सभी का, ये हम सब का मनपसंद गीत।

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता हैं रणधीर बांगड़, गुरमीसो, गौरव, प्रवीण, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली का गीत। गीत के बोल हैं हुस्न पहाड़ों का। इसे अपनी आवाज से सवारा है लता मंगेशकर जी और सुरेश वाडकर ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, सुनाते हैं आपको एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है अम्बाला कैंट से, और भेजने वाले श्रोता है श्रीमती उषा कौशल जी। ये सुनना चाहती है फिल्म मधुमती से गीत। गीत के बोल है सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। तो आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा नगमा।

0: मौसम हसी।
1: आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं आज के कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत, और ये गीत है फिल्म राम और श्याम से। गीत के बोल है, हम भी अगर बच्चे होते। इस गीत को आवाज दी है मना डे, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है पूजा विहार अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है प्रेमचंद राजपूत। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है वंशिका, सुमेश कुमार और इनके सभी दोस्त। आप सभी को हम इस गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के फरमाइशी गीतों का सफर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हमारी प्रस्तुति भी उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा और इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, वंदे मातरम।
2: और मुझे भी दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप

0: 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पर फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर

शम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शमी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

0: फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शमी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शमी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात जब पृथ्वीराज को शमी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो
1: उन्होंने
0: कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मान ली।

0: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और अम्बाला से FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से आपसे मुखातिब हूं और बराह रास्त हूं यानी लाइव हूं हरियाणा के अधिकतर सामुदायिक रेडियोज पर। जैसे आप अम्बाला से ये आवाज़ सुन रहे हैं और ऐसी ही आवाज़ आप ये सुनेंगे चरखी दादरी से, नारनौल से, पलवल से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, मैं कहूँ गोंदर करनाल से। और आप सभी हरियाणा के श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन आज के कार्यक्रम राम राम हरियाणा में, जो आप सोमवार से शुक्रवार तक 4 से 5 बजे लाइव सुनते हैं, देखते हैं और हमारे साथ आप रूबरू होते हैं। आज है 22 मई 2026 शुक्रवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी सप्तमी 2083 विक्रम संवत। और आप सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं हर गांव की खुशी, हर गांव की उन्नति और साथ में हम कस्बों और शहरों की भी बात करते हैं और साथ में मानवता की भी बात करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें हमारी इस कार्यक्रम के नंबर पर जो है 8816-904-904। नंबर एक बार फिर बता देता हूं, 8816-904-904। एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा कि गर्मी बहुत है, गर्मी इस समय अंग्रेजी में कहूंगा तो पीक पर है। अगर हम बात करें तो इस समय गर्मी उस लेवल पर है कि हमें धूप में निकलना भी मुश्किल हो रहा है, पर जिंदगी कमरे के अंदर बैठ के नहीं हो सकती। अगर घर से बाहर निकलना जरूरी है, आप अपने सिर को ढक के चलें, आप अपने चेहरे को ढक के चलें, कुछ गमछा हो, कुछ तौलिया हो, कुछ भी गीली करके आप अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और हमें काम तो जरूर करना है पर हमने अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, छोटे बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा पीना है ताकि हमें लू या हीट स्ट्रोक का नुकसान ना उठाना पड़े। ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हम रेडियो पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी और अलग अलग लोग अलग अलग स्टेशन पर भी अपने अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। और मेरे सभी साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे पास हल्की सी मुस्कान लेके डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी है। नमस्कार सर, स्वागत आप सभी का। गुरविंदर जी है
1: जी, जी नमस्ते।
0: और हमारे साथ जितेश जी भी है और प्रीतम जी है और हमारे साथ आज के साथी जो मेहमान है वो भी जुड़े हैं। आगे उनसे बात करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का। जी
1: देखिए, मैं आपने ना हीट स्ट्रोक की बात की, गर्मी की बात की, गर्मी से बचने के उपायों की बात की, आपने कहा कुछ और ना हो तो सिर पे एक परना बांध कर निकलें, गीला कर लें उसको। भाई मैं कुछ और कहूंगा, मैं तो ये कहता हूं कि अगर सबके सब गुरविंदर सिंह जी की तरह और मेरी तरह और मनोज नाथ जी की तरह दस्तार बांधना शुरू कर दें भारत की परंपरा जो है उसके अनुसार, तो भाई कम से कम जो गर्मी के हमले से भी आप बच सकते हैं। देखिए ना, हमारे बुजुर्गों ने भारत की भारत का जो मौसम है उसके अनुरूप सिरों को शिरस्त्राण, दस्तार, साफा, पगड़ी, इससे संरक्षित करने की व्यवस्था सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए बहुत पहले कर दी थी। और उसके अलग अलग स्वरूप हैं पूरे भारत में, कहीं टोपी पहनी जाती है, कहीं पगड़ी अलग अलग अंदाज की पहनी जाती है, और ऊपर से शुरू हो जाइए डोगरे कश्मीर में, वो भी मैं पंडित रामनाथ डोगरा की फोटो कभी कभी देखता हूँ, वो सफेद रंग की पगड़ी
0: जी साफा बांधते।
1: और राजा महाराजा करण सिंह वो टोपी पहनते हैं, उनके पिता जो हैं महाराजा हरि सिंह वो पगड़ी बांधते थे बहुत बार। तो ये हमारी परंपरा है जिसको मैं तो उसको निभाने के प्रयास में हूं, और कहीं ना कहीं गुरविंदर जी भी निभा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह की परंपरा। मनोज नाथ जी के सिर पर भी मैं देख रहा हूं कि वो शिरस्त्राण है परंपरागत, तो अगर इसको आप लोग अपना लेंगे हमारे वाले कुनबे में शामिल हो जाएंगे। भारत जी जब बांधेंगे ना पगड़ी साफा, बहुत खूबसूरत लगेंगे, मुझे विश्वास है, तो सबको उस तरफ जाना चाहिए।
0: वादा करता हूँ हरियाणा का गौरव हमारे सिर पर, हमारे सिर का ताज है। वादा करता हूं कि कुछ दिनों के बाद मैं हरियाणवी पगड़ी पहन के इस शो में आऊंगा,
1: बहुत आनंद आएगा। और निश्चित तौर पर दोस्तों, ये तो हमको देखना ही है। अभी नौतपा शुरू होने वाला है, कल जितेश जी ने शब्द का प्रयोग किया था शायद। 9 दिन तो भाई साहब जेठ तपेगा और भयंकर रूप से तपने वाला है। आज जो गर्मी है उससे ज्यादा नौतपे में आएगी। उस दौरान और विशेष रूप से हमें अपने खान पान, घर से निकलने के क्रम और हम क्या पहन ओढ़ रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। और कल जब आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, मैं उसमें एक चीज, पता नहीं क्योंकि मैं बीच बीच में जुड़ रहा था, बीच बीच में कटा जा रहा था, हो सकता है आप लोगों ने उस पर चर्चा की हो। एक चीज जो मैं अभी अपनी तरफ से सावधानी बरत रहा हूं, मुझे लगता है सबको बरतनी चाहिए। अब अधिकांश घरों में, शहरी क्षेत्रों में भी और बहुत सारे घरों में ग्रामीण क्षेत्र में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। अब मैं दफ्तर में एयर कंडीशनर में हूं, यहां से उठूंगा गाड़ी में बैठ के चलूंगा फिर एयर कंडीशनर है, घर पर एयर कंडीशनर है, लेकिन एयर कंडीशनर और अगले एयर कंडीशनर के बीच में जब मैं खुले में आता हूं, तो जो एयर कंडीशनर में रहने वाले लोग हैं उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सहसा कमरे में से अचानक निकलकर खुले में ना आएं।
0: कि एक्सपोजर ना
1: शरीर
0: हो
1: को,
0: जी।
1: हाँ, शरीर को अवसर दें अडेप्ट करने का, एडजस्ट करने का, वरना झटका उससे भी लग सकता है साहब। आप अंदर कमरे में एकदम शिमला बनाए बैठे हैं और चलिए अब चलते हैं भारत जी से मिलने, और ठां से बाहर निकल गए, बाहर तापमान 45 डिग्री हो तो वो शरीर के लिए संकट है साहब। आसान नहीं है उसको एडजस्ट करना, उसमें से मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो इसको भी, इसका भी एक स्वभाव बनाए जाने की जरूरत है। गाड़ी से उतरने से पहले, गाड़ी में आप जा रहे हैं एसी ऑन है, तो अपने सारथी से कह के रखें और खुद भी ध्यान रखें कि जब उतरने का समय हो उससे 2-4 मिनट पहले एसी बंद कर देना चाहिए।
0: जी
1: एसी बंद नहीं हुआ तो उतरने से पहले द्वार खोलिए, कुछ क्षण रुक जाइए, ठहर जाइए, अचानक धूप में मत जाइए, अचानक ठंडे में मत जाइए। इस उपाय का भी पालन करेंगे तो आप बचेंगे। बहुत सारे मित्र फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ते ही हैं भारत जी हर दिन।
0: जी
1: प्रीतम जी
0: जी
1: से अनुरोध करूंगा कि कुछ जो टिप्पणियां आ गई हैं एक बार उनको पढ़ दें, और फिर से दोहराऊंगा, रेडियो ग्रामोदय से संगम हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारा जो प्रोग्राम का नंबर है उस नंबर पर फोन करके अगर श्रोता जुड़ेंगे ना तो ही इस कार्यक्रम को हम सफल मानेंगे। और ये जो भाई साहब आए ना, नए नए दिख रहे हैं अभी, अचानक प्रकट हुए हैं, स्वामी मनीश्वरानंद जी अरावली प्रांत के, ये इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, कोई खाप सभा बुला के। ये कितने दिन से हमारे यहाँ से गायब हैं। मनीष भाई, आपका स्वागत है राम राम हरियाणा में। और आप जो ये बिना स्वीकृति के छुट्टी पर चले जाते हैं तो इस पर पेनल्टी का भी प्रावधान है, ध्यान रखिएगा।
0: सर, कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
1: चलिए फिर प्रीतम जी कमेंट पढ़ दीजिए, फिर गुरविंदर जी आज के मेहमान सरपंच का परिचय कराएंगे, मेरे पड़ोस में ही है ये, बिल्कुल नजदीक में, मनोज नाथ जी। प्रीतम जी कमेंट्स पढ़ दीजिए खटाखट।
0: चलिए
1: प्रीतम जी म्यूट हैं आप।
0: चलिए सर, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ।
1: जी जी
0: हमारे पास विजय सिंह लखेरा कह रहे हैं, राम राम जी आप सभी रेडियो के दोस्तों को, राम राम हरियाणा। करमबीर सिंह कहते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ग्रेट मैन है। सौरभ अरोरा राम राम हरियाणा। सुनील शर्मा राम राम हरियाणा। सर्जन सिंह लिखते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से जुड़ने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके चैनल को फॉलो जरूर करें। संजीव बहल राम राम हरियाणा। विकास बंसल लिखते हैं, मुझे यहाँ तक याद है कि गुरुजी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान पिछले लगभग 2 दशक से पगड़ी पहनते ही हैं, और उससे उनकी शोभा लगातार कई गुना बड़ी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। और ये कुछ कमेंट्स मेरे को अभी तक यहाँ पर दिखे हैं, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मनीष जी के ऊपर जो हमने जो जुर्माना लगाना है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जब तक ये जुर्माना भरेंगे तब तक भी इनको भी नहीं पता चलेगा कि क्या जुर्माना है। तो मैं चाहूँगा कि मनीष जी अपनी स्वर्णिम आवाज़ में सभी का स्वागत करें, और अपनी भाषा में, ना कि हिंदी में ना अंग्रेजी में, और अपनी देसी माँ कहें, सारने सारियान्यू, राम राम सारियान्यू।
1: अहीरवाल वाली बोली में अरावली के इलाके का मौसम बता दीजिए।
0: फिर हम जी फिर हम जी मनीष मनीष जी
2: जी जी जी सभी को सबसे पहले तो राम राम हरियाणा।
0: हिंदी में
2: समा जाऊंगा मैं, काफी समय से आप
0: सर मैं टोक रहा हूँ आपको, हिंदी में नहीं
2: मारी तरफ से। जी क्षमा जी, माफी जी जी जी, सारिया ने हरियाणवी में राम राम हरियाणा, और मारे एरिया में तो जी हिंदी और हरियाणवी मिक्स होके चलती है, खड़ी बोली तो आपकी तरफ भी चल रहे।
3: हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी और हरियाणवी तो एक ही हैं, हिंदी की उपबोली है हरियाणवी, लेकिन हरियाणवी का जो स्वरूप अहिरवाल में चलता है, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, उसमें भी बोलिया करो कभी कभी।
2: जी जी बिल्कुल कोशिश करेंगे, अब आप लोगों के सानिध्य में आगे मुझे यही सीखना पड़ेगा, पहले तो ये था कि ये नहीं बोलनी, लेकिन अब आपने ये बताया है तो ये बिल्कुल माँ बोली है, लेकिन हमारी जुबान पर आ नहीं रही ज्यादा, तो कोशिश करेंगे जल्दी आपको इस भाषा में कार्यक्रम में उपस्थित हुआ करेंगे और इसी भाषा में संवाद करेंगे। प्रीतम जी शायद कहीं गायब हो गए मेरे ख्याल से।
3: जी गुरविंदर जी, सरपंच महोदय का परिचय कराइए, फिर आगे बढ़ेंगे। आज चलते हैं ललियाणी में क्या हो रहा है देखते हैं।
4: राम राम जी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, राम राम हरियाणा, और आपको पूरे को सभी को राम राम जी, गुरविंदर जी, भारत जी, और अरावली से जो अपने भाई जी, सभी को राम राम। मैं ललियाणी गांव से सरपंच हूं जी, पूरी नगरी की तरफ से आप सभी को प्रणाम जी।
3: अच्छा आप स्वयं सरपंच है ना, साक्षात श्रीमती तो नहीं है?
4: हाँ जी, नाम मैं खुद सरपंच हूँ, मनोज नाथ जी।
3: जी ठीक, मनोज नाथ जी ललियाणी गांव के सरपंच हैं, और ये ललियाणी गांव जो है नीलोखेड़ी विधानसभा का गांव है, और नीलोखेड़ी से कितने किलोमीटर पर बैठे हैं आप ये बताइए?
4: 12 किलोमीटर
3: है जी,
4: 10-12 किलोमीटर है पूरा।
3: मुझे लग रहा है मैं आपके गांव में एक बार आया हूँ, वहां एक गुरु घर में भगवान दास जी का एक कार्यक्रम था, एक गांव सब विधायकों को एक एक गांव में जाने के लिए कहा था सरकार ने, और मेरी भी ड्यूटी उस दिन विधायक जी के साथ लगी थी, तो ललियाणी में आया हूँ, मैंने ललियाणी का पानी भी पिया, ललियाणी की चाय भी पिया, ललियाणी की रोटी भी खा रखी है।
4: बिल्कुल बिल्कुल जी, आप मिले जी, मैं आपको मिले, दर्शन दिए आपने जी ललियाणी गांव में जी।
3: अच्छा ये बताइए ललियाणी गांव में के है, कितना बड़ा है, कितनी आबादी है, कौन सी बिरादरी है, के अच्छा हो रहा है, के बुरा हो रहा है, वो बता दो एक बार।
4: ललियाणी गांव में जी सिख समुदाय से है जी, और लबाणा सिख परिवार से, राय सिख परिवार है, बाल्मीक समुदाय है, और नाथ जो हमारा जो सपेरा परिवार है, जोगी परिवार, वो भी यहाँ पर 250 करीब वोट है हमारे, और सिख समुदाय की है 150 और 300 के करीब वोट है लबाणा सिख परिवार की।
3: अच्छा
4: 225 के करीब है बाल्मीक समुदाय की वोट जी।
3: तो जट सिख नहीं है, लबाणे हैं और राय सिख हैं।
4: जट सिख है और जट सिख भी है और लबाणा सिख भी है।
3: चलिए बहुत बढ़िया, कुल आबादी कितनी है, वोट कितने टोटल?
4: 1400 के करीब आबादी है और 1000 के करीब वोट है।
3: चलिए तो बस एक प्रश्न मेरा और फिर बाकी साथी आपसे सवाल करेंगे, मनीष जी भी पूछेंगे, जितेश जी दूर कहीं हरियाणा के दूसरे कोने से आपसे बात करेंगे। अब मुझे तो ये बता दीजिए कि ये सरपंच बनने का जो आइडिया है, सरपंची लड़ने का ये विचार है, ये आपके खुद के दिमाग में आया था कि किसी और ने आपको चढ़ाया सूढ़ी पे?
4: ये पूरे गुरुद्वारा से, ललियाणी गांव से सिख समुदाय के जितने भी परिवार थे, उन्होंने बोला भाई हर बार सरदार भी और बाल्मीकि समुदाय सरपंच बना है, इस बार जो नाथ जी है ललियाणी के डेरा जोगी माजरा से, उनको सेवा का मौका देते हैं।
3: अच्छा तो ये समाज ने कहा आपको क्या आगे बढ़ो? मनोज नाथ जी का कनेक्शन जो है ना, वो
4: एक सेवा का मौका दिया है, जो मुझे से काम करने का कार्य किया।
3: चलिए बढ़िया, मनीष जी ये ललियाणी वालों से आप ही पूछ लीजिए कुछ। खांस लो, कौन रोक रहा है
2: सर? सर ये सर्दी गर्मी का जो आपने बताया था कि एसी और नॉन एसी, तो उसी चीज का शिकार हो गए हैं, और इसका तो कोई नुस्खा और बताइए भारत जी। रेडियो विदस्ता की ओर से इस खांसी जुकाम का कोई नुस्खा बताइए।
0: देखिए
2: ये एसी और देसी के चक्कर में खराब हो चुके हैं
0: मनीष जी, या तो आप पूरे देसी में
2: बाकी
0: या तो देसी

0: हैं, कौन कौन से गांव हैं, कुछ पांच चार के नाम लियो मनोज नाथ जी।
1: जटपुरा है जो इंद्री
0: हाँ,
1: ब्लॉक में पड़ता है,
0: जटपुरा
1: एक
0: और
1: लिल्याणी अपना ब्लॉक में, एक
0: हाँ
1: बोहड़ा बोहड़ा गांव है जो बोड़ा खालसा में, वहां भी स्पेरस मुजा है अपना,
0: बोड़ा खालसा और
1: और पानीपत में पड़ता है फरीदपुर, गढ़
0: फरीदपुर।
1: सरनाई,
0: फरीद शायद
1: गढ़
0: फरीदपुर का ही एक
1: सरनाई
0: हमारा साथी होता था स्कूल के दिनों में, जसमेर नाम
1: फरीदपुर
0: है।
1: करनाल जिले में,
0: फरीदपुर करनाल
1: गोंडा हल्का
0: में।
1: लगता उनका। जी
0: अच्छा,
1: हाँ जी हाँ
0: पानीपत, पानीपत के एक गांव के एक मेरे स्कूल के दिनों में हमारे एक जूनियर होते थे जसमेर नाथ। चलिए
1: हाँ
0: खैर,
1: जी है जी।
0: तो अभी आप मुझे ये बताइए कि जो सपेरा समुदाय है अभी उसका मूल व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं आमतौर पर आपके समुदाय के लोग?
1: हमारे समुदाय के तकरीबन इस टाइम पढ़ाई के प्रति बच्चों का बहुत रुझान है, नौकरी भी लगे हैं, और ये 10 साल से है, पहले नहीं था।
0: तो जो सपेरे वाला काम था वो समाप्त कर दिया, अभी लोग नहीं कर रहे हैं?
1: अब तो 1% 2% मुश्किल।
0: अच्छा, इस सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिली है सपेरा समुदाय के, आपकी जानकारी के हिसाब से अपने आसपास?
1: पहले समाज में किसी को देखा नहीं जाता था कि कोई सरकारी नौकरी हमारे समुदाय में लगा है, पर इस 10 12 साल से कोई गांव बचा होगा जहां पर 1 2 3 कोई ना कोई सरकारी नौकरी सभी गांव में हमारे में लगी है।
0: चलिए बहुत बढ़िया। आपने अपने गांव में सरपंच बनने के बाद क्या क्या करने की ठानी थी और क्या क्या हो गया अब तक?
1: मैंने लिल्याणी पंचायत में जी एक जो खस्ता हालत बहुत ज्यादा थे, रास्ते सारे मैंने 5 लाइन 12 इंची डाल के, 6 6 फुट 5 5 फुट उनके गटर बना के और लेंटर डाल के उनके ऊपर जो लिल्याणी चौकी माजरा में मुहिम चलाई थी अपना गंध मुक्त, जो अपना गंदगी ना दिखे अंडरग्राउंड सारा कार्य रहे, ये मैंने तकरीबन लिल्याणी पंचायत में किया है। एक अपना सामुदायिक भवन था कम्युनिटी हॉल, वो भी अपना यही HRDF और ये जैसे एफसीसी स्कीम के तहत पूरी 80 बाई 40 का जो सामुदायिक भवन था उसका सौंदर्यकरण नव निर्माण पंचायत के द्वारा हुआ जी।
0: तो अब उसका, उस समुदाय भवन पे खर्चा तो कर दिया आपने, उसका इस्तेमाल कितना होता है?
1: उसका इस्तेमाल तकरीबन ब्याह में शादी में कोई खंड पाठ हो या कोई भी मतलब खुशी गम का कोई प्रोग्राम होता है ना, तो उस सामुदायिक भवन का तकरीबन सभी को फायदा होता है गांव को।
0: और उसकी संभाल कैसे होती है, मान लो उसकी सफाई है,
1: एक
0: उसके खर्चे हैं, वो
1: लाइब्रेरी
0: कैसे
1: जो
0: निकलते हैं?
1: आपको मिली है लाइब्रेरी
0: लाइब्रेरी की
1: वो
0: बात नहीं
1: पंचायत की
0: करेंगे,
1: तरफ
0: लेकिन
1: से
0: पहले
1: मैं कराता रहता हूँ तकरीबन।
0: नहीं, पहले मेरे को ये बताओ कि ये आपने जो कम्युनिटी हॉल बनाया है ना, इसकी संभाल कैसे होगी? सरकार ने एक बार पैसा दे दिया, आपने बढ़ा दिया, अब वो साफ सुथरा रहे, वहां के खर्चे निकलते रहे, वहां टूट फूट हो तो वो ठीक हो जाए, इसका इसका पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, कैसे करोगे?
1: वो पंचायत की तरफ से ही जैसे पे होता है, जब भी साल 2 साल 6 महीने में कभी सफाई करानी हो या कोई कार्य करना हो
0: और जो शादी के लिए उसको लेते हैं हॉल
1: पंचायत
0: को,
1: की तरफ से,
0: सुख दुख में या शादी ब्याह में कोई
1: उसके लिए
0: उसको लेता है,
1: कोई
0: उसकी कोई फीस है?
1: ना जी ना,
0: तो आप ऐसे
1: उसकी
0: बिना
1: फीस
0: फीस,
1: नहीं।
0: आप उसको बिना फीस के चला लोगे क्या, संभाल लोगे क्या? अभी उस, अगर मैं अभी आ जाऊं आपके गांव में तो क्या मुझे वो सामुदायिक भवन साफ सुथरा मिलेगा या गंदगी के ढेर मिलेंगे वहां?
1: बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, आपके आने से पहले पूरी सफाई मिलेगी।
0: ये मेरे आने से पहले शुरू कर देंगे क्यों? ऐसा लगता है भारत जी, इनको पता, इनको बता के थोड़ी जाऊंगा मैं तो अचानक आ जाऊंगा। भारत जी, कुछ सवाल आपके मन
1: बिल्कुल,
0: में
1: आप
0: हो तो
1: कभी
0: मैं
1: भी
0: पूछ
1: दौरा करो
0: सकता
1: आपका दिल खुलेगा।
2: हूं। हमारे
0: हाँ
2: साथ,
0: पक्का मैं आऊंगा जी।
2: हमारे साथ जितेश जी है। जितेश जी
1: हाँ
2: से
1: जी हाँ
2: अनुरोध
1: जी
2: करते हैं कि जितेश जी आप पूछिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं आज के डेट में हमारी जो संस्कृति में जो पहले काम होते थे अब आहिस्ता आहिस्ता वो लुप्त हो रहे हैं। जैसे इस समय हमारे साथ मनोज नाथ जी है और सपेरा समुदाय से ये बिलोंग करते हैं, तो आपने कब

0: तरीके के हमारे आसपास के लोग देखे हैं, क्या वाकई वो चीजें लुप्त हो रही है? और अब कृपया आपके जो सवाल है आप मनोज नाथ जी से पूछिए।
1: बिल्कुल, सबसे पहले सर हम ललियानी गांव के सरपंच साहब का राम राम हरियाणा में स्वागत करेंगे, और हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से या फिर हमें सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो अपने सलाह सुझाव और कमेंट्स हमारे साथ जरूर साझा करें, शेयर करें। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 8816-904-904। सर सबसे पहले तो हम ललियानी गांव के लोगों की प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने सिख समाज और वाल्मीकि समाज ने इकट्ठा होकर नाथ समाज को अपनी पंचायत का प्रतिनिधि करने का मौका दिया। दूसरा सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई काम आपकी ग्राम पंचायत में जिसको आप करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो राम राम हरियाणा के माध्यम से हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा काम जिसको करने के लिए आप लगे हुए हों और वो हो नहीं पा रहा हो, तो उसके बारे में हम आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे।
2: मैं ललियाणी पंचायत में जो जो कार्य सोच के सरपंच बना था ना, उस हिसाब से अपनी पंचायत के फंड के हिसाब से और सरकार की मदद के हिसाब से वो कार्य मैं कर रहा हूँ
1: जी। अच्छा, तो ऐसा कोई भी चैलेंजिंग काम आपके सामने नहीं है? क्योंकि
2: गांव की गलियां सड़कें साफ रहे
1: जी, क्योंकि हमारे
2: गांव में सामुदायिक भवन हो, पंचायत घर हो।
1: हरियाणा पंचायती राज यानी नीलोखेड़ी जो है पंचायती संस्थान के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा चैलेंजिंग काम जिसे आप करना चाह रहे हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा हो, तो आपने बताया कि आपके जो सारी चीजें आपके माइंड में है आप उन सारी चीजों पर काम कर रहे हैं, और हम भविष्य में आशा करेंगे कि आप ऐसे ही आगे काम करते रहें। भारत जी, अब आप सरपंच साहब से आप अपना सवाल जान सकते हैं।
0: जी सरपंच जी, आपने जीतेश जी का अगर प्रश्न सुना होगा तो आप विस्तार में इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जब भी हम जिंदगी में आगे चलते हैं तो प्रॉब्लम्स और परेशानियां तो आती हैं। जीतेश जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा कार्य जो आपको करने में दिक्कत हुई, और साथ में आप ये बताइए कि आप हरियाणा सरकार के जो सहयोग से आज तक क्या कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उस गांव के जानकार है और खास करके जो हमारे हरियाणा संस्कृति में अलग अलग कार्य है तो वो आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सवाल है, और जो जितेश जी का सवाल है पहले आप उसका उत्तर दीजिए कि क्या। हाँ जितेश जी प्लीज बोलिए।
1: सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गांवों में जैसे पंचायत की जमीने हैं उस पर भी अवैध कब्जे हैं, जोड़ों की जो जमीनें हैं, जोड़ जो हमारे होते हैं गांवों में, तालाब या जोड़ जिनको हम बोलते हैं, उन पे भी कई ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जे हैं, तो आपके गांव के साथ ये समस्या तो नहीं है
0: जी? मनोज नाथ जी।
2: हाँ जी, तकरीबन गांव में कुछ एक जगह है जो कब्जा है जोड़ों के पास
1: जी,
0: आप
1: तो उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं
2: इसमें? अभी मैंने जोड़ का पानी निकालने का कार्य किया हुआ है
1: जी।
0: मनोज नाथ जी,
2: उसके बाद अपना उसकी खुदाई सफाई करके
0: जी आप विस्तार में बताइए, हम आप सभी आपको सुनने जा रहे हैं और सारे श्रोता भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके सरपंच बनने के बाद कौन कौन सी ऐसे काम हैं जो आपने किए हैं, हम शांत रहेंगे आपको सुनेंगे। मनोज नाथ जी आप
2: जो मैंने कार्य किया पंचायत में।
3: मनोज जी ये कह रहे हैं कि जरा खुल के बताओ यार, थोड़ा थोड़ा नहीं ढेर सारा बताओ
0: जी,
3: खेल के और खुल के।
2: ढेर सारा जो मैंने पंचायत में कार्य पंचायत में किया है
1: जी
3: जी,
2: तीन संस्थान का, सिख समुदाय का, वाल्मीकि समुदाय का और हमारा सपेरा समाज का जी। दो शमशान घाट जो सिख समुदाय का शमशान घाट है उसका कार्य और रस्ते का उनका पंचायत की तरफ से कार्य चलाया हुआ है जी।
3: जी चल रहे अभी शुरू हो रहा
2: है। जो अपना सपेरा समाज का शमशान घाट उसकी चारद्वारी और गेट और फर्स्ट टाइल ये जो मतलब ब्लॉक टाइल होते हैं पेवर ब्लॉक वो लगा के सपेरा शमशान घाट में भी सौंदर्यकरण का कार्य किया है।
3: चलिए मैं यहाँ पर एक वैचारिक पक्ष, भारत जी आपकी अनुमति से
0: जी, प्लीज।
3: और ये प्रीतम जी कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है वो मुझे दिखने बंद हो जाते हैं।
0: सर
3: प्रीतम जी यही हो क्या? प्रीतम जी अदृश्य अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे साथ मौजूद होंगे निश्चित तौर पर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी मनोज नाथ जी ने बताया कि इन्होंने गांव में सिख समुदाय के जो शमशान घाट थे और सपेरे समुदाय के जो शमशान घाट थे उनको बेहतरीन कराया। भाई साहब आपका अभिनंदन कि आपने लोगों की अंतिम यात्रा को सुखमय बनाने और अंतिम यात्रा के सहयात्रियों को सुगमता प्रदान करने के लिए शमशान घाट के रास्ते ठीक करा दिए। कुछ नहीं हुए तो और हो जाएंगे। लेकिन एक बात निकल करके नहीं आ रही भारत जी इसमें
0: जी,
3: कि आज भी हम कहां खड़े हुए हैं कि हिंदू समाज के अलग अलग अंग वे अपने मुर्दों को अलग अलग फूंकने जाते हैं। गांव के ग्राम समुदाय अपने शवों का भी अंतिम संस्कार एक स्थान पर नहीं करता। अमुक जाति का शमशान, इस जाति का शमशान घाट, उस जाति का शमशान घाट, साहब जो जा लिया उसकी जाति भी चली गई, यही मान लो। जब तक वो यहां था जाति थी, मान
2: अपने तो ये ऐसे कार्य है।
3: लेकिन जो चला गया उसकी कौन जात? क्या क्या ये स्थिति नहीं बननी चाहिए हमारे गांवों में कि हमारे शमशान घाट तो एक ही हो, अलग अलग क्यों हो भाई? ठीक है बड़ा गांव है, अलग अलग दिशा में हो सकते हैं, लेकिन उन पर जाति का लेबल हो और रहे। है तो बहुत सारे स्थानों पर अभी भी है। हमारे यहाँ दादूपुर गांव है असंत विधानसभा क्षेत्र का, आर्य समाज का अच्छा प्रभाव है उस गांव में, और उनके यहाँ शमशान घाट एक है, उसमें कोई जाति का बंधन नहीं है। सब जातियों के व्यक्तियों की अंतिम यात्रा वहीं पहुंचती है और अंतिम संस्कार एक ही परिसर में होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अधिकांश गांवों में अभी भी वही स्थिति है लल्याणी वाली कि वाल्मीकि और हरिजन वो भी अलग अलग स्थानों पे अपने मुर्दे उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, भले ही छोटा सा गांव हो। ये स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे इस विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं पूजनीय मोहन भागवत जी, उनकी एक बात याद आती है, मैं दोहराना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। भागवत जी कई वर्षों से एक बात कह रहे हैं कि बाकी चीजें समान कब होंगी देखा जाएगा, लेकिन हिंदू समाज के अलग अलग जो हमारे जातियां बिरादरियां समुदाय हैं उनको अपने शमशान घाट, अपने पूजा स्थल और जो पेयजल के स्रोत हैं, पानी के स्रोत हैं, जहां कहीं अभी भी कुओं से पानी आ रहा है, जल के जो स्रोत हैं उनमें तो कम से कम भेदभाव समाप्त करना चाहिए। अगर गांव में कुआं है वहां से कहीं पानी पिया जा रहा है, हालांकि हरियाणा में कुएं नहीं रहे, अगर कुआं है तो सारा समाज एक कुएं से जल क्यों नहीं पी सकता, क्यों नहीं पीना चाहिए? कुओं पर भी लेबल लगे हुए थे अभी तक, वो लेबल समाप्त होने चाहिए। शमशानों पर लगे हुए जातियों के लेबल समाप्त होने ही चाहिए। और भगवान का द्वार मंदिर वो भी वो तो सबसे पहले ये खुला होना चाहिए। बहुत सारे गांव में अभी भी गड़बड़ है। आपके यहाँ क्या इस मामले में क्या सिनेरियो है मनीष भाई, जितेश भाई आप लोग भी बताएं, दक्षिण हरियाणा के ग्रामीण अंचल में क्या है? अभी भी ऐसी है कि यहाँ अहीर जलाए जाएंगे, यहाँ राजपूत जलाए जाएंगे, यहाँ जाट जलेंगे, ऐसा ही है क्या अभी भी?
4: जी पर्टिकुलर पुराने जो क्षेत्र है उनके अपने अपने शमशान घाट है। इस मोहल्ले का शमशान घाट ये है और मोहल्ले लगभग कास्ट वाइज थे कि भाई ये मोहल्ला जाटों का मोहल्ला है, ये मोहल्ला सैनियों का है, और वो लगभग अपने ही शमशान घाटों में अंतिम यात्रा लेकर जाते हैं और शहर के चारों तरफ शमशान ही शमशान दिखाई देते हैं लगभग। तो ये चारों तरफ, और आजकल तो विकास की झड़ी लगी हुई है, सरकार पैसा लगा रही है तो वो टीशर्ट अलग से ही दिखा देते
3: हैं। जिधर भी देखिए शमशान नजर आते हैं।
4: और एक जोक भी चलता है, चुटकुला अक्सर चलता है कि हर घर में शमशान बना दिया जाएगा मेरे जीतने के बाद। तो वो वाले कहावत है कि चार तरफ शमशान घाट हमारे नहीं, हर शहर में ही दिखाई देते हैं।
3: जो मैंने बात कही उस पर आपकी क्या राय? मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा
4: बिल्कुल
3: बड़ा गांव है, बड़ा शहर या बड़ा गांव है वहां मल्टीपल शमशान हो सकते हैं, होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भले मानसों मरे हुए के साथ तो जाति का टैग चिपका के ना लेके जाओ उसको, लाश को, मैं तो ये कह रहा हूँ।
4: जी बिल्कुल, इस पर विचार होना चाहिए। और लगभग लगभग बड़े शहरों में तो ये काम खत्म हो ही चुका जी, वहां तो आजकल बिजली की भट्टी में ले जाके 5 मिनट में हांडी हाथ में थमा देते हैं, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में ये बात अभी तक है, और इसे मेरे ख्याल से एक कुरुति के रूप में लेना चाहिए। और चौहान साहब, आप पहल करके इस विषय पर तो जरूर कुछ न कुछ कोशिश कीजिए कि कार्य किया जाए कि लगभग लगभग अंतिम समय में तो एक ठिकाना बने, और गांव में भी अलग अलग विकास का अलग अलग जगह पे पैसा लगाना पड़ता है कि आज वाल्मीकियों के शमशान घाट की घोषणा हुई है, कल फिर जाटों के शमशान घाट की होगी, ओहो फिर राव साहब रह गए उनके शमशान घाट को तो जरूर बनाना पड़ेगा। तो इस विषय पे तो वास्तव में ही कार्य करने की आवश्यकता है चौहान साहब, और आपसे आग्रह करूंगा कि इस पे तो जरूर कोई न कोई नया नोटिफिकेशन जारी करवाएं।
3: नोटिफिकेशन से का काम मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन
4: सामाजिक नोटिफिकेशन जरूरी नहीं जी, सरकारी सामाजिक नोटिफिकेशन तो इस पे अमल आ सकता है।
3: इस विषय पर तो गांवों में सहमति बननी चाहिए, समुदायों में सहमति बननी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मनोज नाथ यहाँ बैठे हुए हैं, मनोज नाथ लल्याणी के सरपंच हैं, वहां पर तीन शमशान घाट है, भाई तीनों को चलने दो। लेकिन क्या वो दिन आ सकता है जब लल्याणी के सिख, वाल्मीकि, नाथ, रामदासिये, रैदासिये सब ये तय कर दें कि जिसको जो निकट लगता है शमशान वहां हम अपने मुर्दे को लेकर जाएंगे, और वहां पर उसका प्रबंधन करने वाले, शमशान घाट का प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं वो आपत्ति नहीं करेंगे कि यू कौन आ गया? क्यों मनोज जी, हो सकता है ऐसा? क्या
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वचन है। भेदभाव खत्म होना चाहिए जो किसी के है।
3: लल्याणी से शुरुआत कर सकते हैं क्या कभी? मैं आ जाऊं, लल्याणी वालों को इकट्ठा कर लोगे, बतला लेंगे, शांति बन जाए।
2: आपको पूरी नगरी की एक सोच से, आपकी भाषा से, आपके दिशा निर्देश से बहुतों को ज्ञान मिलेगा।
3: चलो फिर आज ये तय रहा मनीष जी के सुझाव पे। हेलो, आप मेरी आवाज पहुंच रही है?
0: जी जी आ रही है सर।
3: जी मैं ये कह रहा हूँ कि मनीष जी के सुझाव पर आज से ये तय रहा कि हम लल्याणी से शुरू करेंगे, और मैं किसी दिन जब ये लल्याणी वाले मित्र मुझे बुलाएंगे तो मैं इनके यहाँ जाऊंगा और एक बार गांव को इकट्ठा करके वहां पर हम आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। वास्तविकता, वास्तव में ये काम सरकार के किसी आदेश से नहीं होने वाला। ये काम जब होगा, आज हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 10 बरस बाद हो, वो ग्राम समुदाय के सहमति से होगा। इसमें जबरदस्ती करना, थोपना ये शायद हमारे लिए संभव नहीं है। गुरबिंदर सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आपका माइक्रोफोन चल रहा है तो जरा आप भी मनोज नाथ जी से कुछ पूछ लीजिए, कहलवा लीजिए इनसे कुछ जो हमारे किसी काम का हो।
5: अरे सर, जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ, ये जो शमशान घाट की बात चल रही है ना, उससे मैं पंजाब की उदाहरण देना चाहता हूँ। पंजाब में क्या है कि गुरुद्वारा साहब है वो अलग अलग जाति के हैं, जैसे जे एससी का है, जे जनरल का है, जे बीसी का है। तो पंजाब में भी इसके ऊपर ग्राम सभा ने अपना एक मतलब एजेंडा बना के इसको वो किया कि एक ही गुरुघर होना चाहिए, धर्म स्थान और जो हमारे जे शमशान घाट है। अगर जैसे लोकेशन उसकी एक बना के, जगह तो होती है हर एक पंचायत में जहां से सुविधा हो गांव वासियों को, उसी को उत्सव बनाया जाए। जैसे भी मनोज नाथ जी बोल रहे हैं कि उसकी चार दीवारी गिरी है, किसी में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो शमशान घाट और एक बस स्टैंड, दो चीजें मैंने जो अपने इस चीज को देखता हूँ कि जिस गांव में बस स्टैंड अच्छा नहीं है, कोई बाहर से आता है, उसके कपड़े भीग जाते हैं, बारिश होती है या खड़ने के लिए धूप में जगह नहीं है, तो वो सबसे पहले वहां की पंचायत को कोसता है। दूसरा, शमशान घाट अच्छा नहीं बना हुआ, वहां दुख में सारे शरीक होते हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन जहां कोई सुविधा ना होने के कारण, पानी की सुविधा नहीं है, सेट नहीं है, या उनके बैठने का साफ सफाई करनी है, तो वो सारा दोष ग्राम पंचायत को देते हैं कि या लोगों को बाद में पहले ग्राम पंचायत को बोलते हैं कि यार कैसी ग्राम पंचायत है जो इसको मतलब अच्छा प्रबंध जहां पे नहीं कर सकी। इसके लिए ये एक सरकार की तरफ से नहीं, सरकार का तो होता है कि चलो उनको तो वोट बैंक है, इसको वो पैसा दे देंगे, वो हो जाएगा, लेकिन जो ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत को सोचना चाहिए अपनी ग्राम सभा में एक रेजुलेशन मता लेके आए कि हमने एक ही मतलब जगह पे शमशान घाट और जो मंदिर अपने गुरुद्वारा साहब है वो एक ही हो, उसी को बढ़िया बनाया जाए, उसी में बैठने की व्यवस्था अच्छी की जाए, अलग अलग करने, इसके एक तो इसमें जो भेदभाव खत्म होगा, दूसरा लोगों को भी अगर कोई पैसे के जैसे हमारे गुरुद्वारा साहब हैं, कोई मंदिर है वहां पे जो फंड इकट्ठा होता है उसके हम जो गरीब लोग हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं। अगर अलग अलग होगा वो तो बिल्डिंगें बनाने में रहते हैं, को वो जो सुधार है वो तो कर नहीं पाते ना।
3: यहाँ पे ना मैं मेरे मन में एक बात आ रही है, उससे मुझे लगता है पूरी सभा आज की हमारी महफिल रेडियो महफिल राम राम हरियाणा सहमत होगी कि हम अपने महापुरुषों के नाम तो लेते हैं, उनकी कई बातों को भूल जाते हैं। गुरु घर बने, मान लो पंजाब में बने, हरियाणा में बने, देश में दुनिया में कहीं भी बने, जिन गुरुओं को की याद में हमने गुरु घर बनाए, जिन गुरुओं को या वाहेगुरु को स्मरण करने के लिए हमने गुरु घर बनाए, वो गुरुओं ने क्या कहा था वही नहीं याद रहा। खालसा पंथ जब बन रहा था तो गुरु कह रहे थे मानस की जात सब एक पहचान बो, ऐलान था, अलग अलग जाति के लोग आए, कोई नाई था कोई कुछ और था, वो सब आए और गुरु गोविंद सिंह ने अलग अलग जातियों के लोगों को इकट्ठा करके खालसा पंथ सजाया, और जब सजाया तो कहा भाई अपना अपना सरनेम छोड़ो, जाति छोड़ो, सिंह हो जाओ, कौर हो जाओ, यही कहा था ना। तो गुरु ने तो कहा था मानस की जात सब है एक है पहचानी वो, लेकिन पंजाब क्या हरियाणा में भी ऐसी स्थिति है कि हम यहां आकर के खड़े हो गए कि हमने गुरु घरों को भी जातियों का बना दिया। और पंजाब में तो ये बहुत बड़ा इशू आज की तारीख में, धीरे धीरे अगर इस दिशा में भी कहीं हम सोचना शुरू करें और चीजों को सुधारें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। जो बचे हुए कमेंट्स हैं जितेश जी आपके अगर सामने हैं तो आप पढ़ देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा।
0: चलिए मेरे पास अलग से, जी जितेश जी आप पढ़ रहे हैं तो आप बता दीजिए।
1: सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे,
0: चले मेरे पास है कुछ कमेंट्स, मैं पढ़ना चाहूंगा। विकास बंसल लिखते हैं जब जीते जी अपनी मर्जी से इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो मौत के बाद लोग उनकी जो इच्छा थी अपनी जाति और मोहल्ले में रहने की वो घर वाले पूरी करेंगे ही। साथ में राधेश्याम शर्मा लिखते हैं परिचर्चा अति सुंदर ढंग से चल रही है, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। विकास बंसल साथ में लिख रहे हैं शमशान ही नहीं धर्मशाला भी जाति और एरिया विशेष के हिसाब से अलग बनती ही है। तो एक्चुअली ये एक ऐसा विषय है जिस विषय पर अगर घंटों चर्चा की जाए तो मुझे लग रहा वो कम है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग मत है। हम कहते हैं कि अगर हमारा गांव सुदृढ़ हो जाए हमारा देश भी सुदृढ़ हो जाए, और ये सोच को गांव वालों ने मिलकर आपस में चाहे ग्राम सभा में चाहे सरपंच जी खुद इस बात पर एक मत हो जाएं तो तब जाके ये बेस से यानी कि जड़ से इस का अगर समाधान निकले तो ही ये आगे एक इसका समाधान निकल सकता है। हमारे साथ बहुत ध्यान से सुन रहे हैं अपना रेडियो से हमारे दोस्त प्रीतम जी। प्रीतम जी आप क्या कहना चाहेंगे ताकि इस कार्यक्रम की जो बात है वो आगे चले, हम गांव की बात करें, सरपंच जी से आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद मेरे मन में भी एक प्रश्न है वो मैं मनोज नाथ जी से करूंगा। प्रीतम जी आप पूछिए। प्रीतम जी आपको हमारी आवाज मिल रही
6: है? सभी को मेरी ओर से नमस्कार। राम राम
0: जी। राम राम।
6: हाँ आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर।
0: जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए।
6: मेरा सरपंच साहब से एक निवेदन है। सरपंच साहब आप जो नाथ समुदाय से हो, आपने नाथ समुदाय को एजुकेशन शिक्षा के लिए कितना जागरूक करके आपके गाँव में बच्चों को शिक्षा की तरफ कितने लेके गए थे, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए क्योंकि काफी बातें बहुत पीछे हो चुकी है, हम कहां से कहां से गए। क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो जो छुआछूत है ये सारी चीजें हम छोड़ चलेंगे, वो अपनी जो आज की क्रांति है युग की वो उस तरफ चल पड़ेंगे। तो आप पहले बच्चों को शिक्षित कर दीजिए कि कोई कास्टिज्म और कुछ नहीं होता, सब हम मानव हैं। लेकिन इससे अगर आप शिक्षित कर देंगे तो आपने शिक्षा की तरफ कितने कदम बढ़ाए आपके गांव में?
2: मैं लिलियाणी पंचायत में जो बच्चे हैं पढ़ाई के प्रति, मैंने बोला 10 साल से बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति बड़ा रुझान है, बच्चे स्कूल जाते हैं। और मैं एक कुछ ना कुछ यहाँ पर कैंप या कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह पढ़ाई के प्रति बच्चों को जागरूक करने का कार्य भी करता रहता हूँ। बच्चे प्राइवेट स्कूल और सरकारी में, तकरीबन लिल्याणी पंचायत से जो बाल्मीक समुदाय के या सपेरा समाज के जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक है, इस टाइम तो चल रही है पढ़ाई में।
0: मनोज नाथ जी, आपके
6: हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे, हम पूरे मानव की बात कर रहे हैं। पूरे जो माता बच्चे हैं वो किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, लेकिन हम मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने जो जितनी कोशिश की, क्या आपके जो 10वीं और प्लस टू का रिजल्ट आया था वो कितना सुधरा आपके जो कार्यकाल है इसमें, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
2: इसमें बच्चों ने मतलब 70-80% नंबर तकरीबन पंचायत में हमारे गांव से बच्चों ने लिए।
1: सत्तर से 75% नंबर मार्क्स जो हैं पीतम जी वहां ललियानी गांव की पंचायत के बच्चों ने लिए। सर हम इसमें एक राव साहब, हम इसमें एक सलाह सुझाव अपने सरपंच साहब को दे सकते हैं कि हम एक कमेटी का निर्माण कर सकते हैं अपने सरकारी स्कूल के लिए, जो उसको मोनिटाइज कर सकती है सप्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कि जो हमारे टीचर्स हैं वो जो हमारे मतलब टीचर्स हैं जो वो पीरियड्स ले रहे हैं वो किस हिसाब से मतलब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और सिलेबस का क्या कर रहे हैं, तो हम वहाँ बच्चों से थोड़ा जान सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे राव साहब ने आपसे सवाल पूछा कि बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो आज सभी रेडियो स्टेशन की तरफ से मेरा सुझाव रहेगा आपकी ग्राम पंचायत को कि सप्ते 10 दिन में आप भी वहां जाकर देख सकते हैं क्लास वाइज कि कौन सा बच्चा है जो ज्यादा छुट्टी कर रहा है या ज्यादा एब्सेंट है। अगर कोई बच्चा सप्ते में 2-3 दिन छुट्टी कर रहा है तो आप उसके घर जा सकते हैं, उसके पेरेंट्स से मिल सकते हैं कि भी स्कूल जाने की वजह क्या है। आप बिजी शेड्यूल है आपका क्योंकि गांव की सारी जिम्मेदारी आप पे होती है, तो आप कुछ 4-5 बुद्धिजीवी जो लोग हैं समाज के उनका एक कमेटी का गठन कर सकते हैं और उसमें जो बच्चे लगातार एब्सेंट्स हो रहे हैं उनके घर जाकर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं कि भाई बच्चों के अनुपस्थित होने का कारण क्या है। दूसरा, जो कमेटी है वो सप्ते 10 दिन में देख सकती है कि जो हमारे टीचर्स हैं, हालांकि वो अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहे होंगे लेकिन फिर भी हम बच्चों से सलाह सुझाव कर सकते हैं कि जो टीचर आपकी आपको शिक्षा दे रहा है वो किस हिसाब से सिलेबस आपको करा रहा है और किस हिसाब का किस हिसाब की चीजें आपको समझ आ रही है। तो नो डाउट इससे आपके जो सरकारी स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा और बच्चे जो शिक्षा के प्रति थोड़ा कम जागरूक हैं या पेरेंट्स जो थोड़े कम जागरूक हैं वो भी इसमें जागरूक होंगे।
0: जी मनोज नाथ जी, क्या कहना चाहेंगे?
2: हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया संदेश आपके द्वारा मिला जी।
1: जी
0: मनोज नाथ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो ग्राम सभा है उसमें कितने सदस्य हैं?
2: ग्राम सभा में सदस्य जाते हैं 50-100-150 बंदे।
0: एक मिनट, हमारे पास एक कॉल आ रहा है शायद। सर हेलो,
3: हेलो, कॉलर हैं क्या लाइन पर संगम? कॉल अटेम्प्ट मुझे लगता है इससे पहले भी हुई हैं और कनेक्ट नहीं हो पा रहे ये है। संगम क्या क्या दृश्य है, क्या हम कॉलर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या मसला है जरा समझाओ जरा। हमें रेडियो ग्रामोदय की आवाज ही नहीं आ रही आज। संगम सुन पा रहे हो क्या आप हमें?
7: जी सर।
3: इतनी देर क्यों लगी जवाब देने में?
7: माइक ऑन कर रहा था सर।
0: चलिए
3: माइक तो ऑन रहना चाहिए। क्या क्या कोई श्रोता कनेक्ट हुए थे, कोई कॉल था?
7: मिस कॉल आई थी जी।
3: अच्छा चलिए, मिस कॉल को मिस्टर कॉल में बदलने का प्रयास हमेशा होना चाहिए। अगर कार्यक्रम में कोई श्रोता प्रयास कर रहा हो तो हम अपनी ओर से भी कॉल करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कभी शर्म संकोच नहीं करना चाहिए, मैं निजी तौर पर ये मानता हूँ। मुझे भी एक सवाल करने दीजिए भारत जी, फिर आप पूछ लीजिएगा ललियाणी वालों से। ललियाणी वालों, मुझे तो ये जानना है कि आपके यहाँ पीने के पानी की क्या स्थिति है
2: ललियाणी पंचायत में।
3: हाँ,
2: 7 महीने से जल घर का ट्यूबवेल खराब है जी।
3: 7 महीने से ट्यूबवेल खराब है और आपने पिछले 1 घंटे में जिक्र नहीं किया उसका, ये क्या बात हुई?
0: और सरपंच जी संतोष लग रहे, सरपंच जी संतोष लग रहे हैं कि गांव वालों को 7 महीने से पैसा नहीं मिल, वो पानी नहीं मिल रहा है तो। और बहुत ही
3: मेरा हंसी भी छूट रही है, गुस्सा भी आ रहा है मुझे। मुझे बताइए भारत जी, दोनों में से किसको बचा के रखूं
0: सर? ये तो
2: टेंडर लग गया बोर का, नवे का।
3: तो जब 11 महीने से आपका अगर ट्यूबवेल खराब है तो पानी कैसे मिल रहा है लोगों को पीने का, ये तो बता दीजिए, हमें पता चलना चाहिए।
2: पब्लिक हेल्थ के द्वारा एक किसान का ट्यूबवेल से काम चलाया है जी गांव में पानी के लिए।
3: हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि जब आपका ट्यूबवेल खराब हो गया तो प्रदेश की सरकार या जन स्वास्थ्य विभाग वो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठा, एक किसान के ट्यूबवेल से पानी लेकर उसे पब्लिक हेल्थ के तंत्र के साथ जोड़ के ललियाणी को पानी मिलता रहा। और अब नया नलकूप जो है वो जल्द लग जाएगा। टेंडर कब हुआ इसका?
2: ये 8 तारीख को इसी महीने को
3: टेंडर होना, मतलब टेंडर अभी फ्लोट हुआ है कि वो काम मतलब टेंडर खुल चुका?
2: टेंडर खुल चुका है, ठेकेदार ने ले लिया है,
3: काम आवंटित हो गया है। तो चलिए भगवान करे जल्द से जल्द जो है ललियाणी को अपने ट्यूबवेल का पानी मिले, और जो खरीद के पानी देना पड़ रहा है किसी किसान के नलकूप का, इस समस्या से मुक्ति मिले। भारत जी, आप ग्राम सभा के बारे में पूछ रहे थे ना, आपकी ग्राम सभा का तो जो गांव के जितने वोटर हैं वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, लेकिन सवाल गंभीर ये है और वो पता नहीं है कितनी ईमानदारी से बताएंगे मनोज नाथ जी, ग्राम सभा असली में होती है कि खाली बातों कागजों में हो जाती है?
2: हाँ जी ना, बिल्कुल, तकरीबन सभी जनता को बुलाया जाता है पर ज्यादा पब्लिक आने का कार्य नहीं रहता
0: उसमें। महिलाएं
3: अच्छा, कितने
2: 200 पब्लिक बुलाते हैं।
3: आखिरी ग्राम सभा में कितने लोग आए थे, और जो भारत जी पूछ रहे हैं कि महिलाएं कितनी थी जरा बता दो।
2: 150 के करीब बंदे इकट्ठे हुए थे जिसमें महिलाएं और पुरुष तकरीबन सभी थे।
3: आप देखो कितने चतुर सरपंच हैं, छिपा रहे हैं अभी भी, ये नहीं बता रहे कि कितने थे 150 में, महिलाएं कितनी थी। भारत जी,
0: सर मैं एक चीज
3: गुस्सा
0: मुझे, मुझे मुझे एक चीज अच्छा नहीं लग रहा वो इस हिसाब से कि सरपंच जी ने कहा कि इनके गांव में 7 महीने से पानी का संकट है, और सरपंच जी बहुत संतोष दिख रहे हैं कि, और जो गाँव वाले, मैं तो चाहूंगा कि ललियाणी गाँव के लोग हमारे इस नंबर पर कॉल करें और वो बताएं कि अगर इस गर्मी, इस भीषण गर्मी में एक दिन भी पानी ना मिले तो उनकी हालत क्या हो सकती है। खाली हम बात करें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने सरपंच जी को गांव का प्रधानमंत्री बोला है तो उस प्रधानमंत्री, गांव के प्रधानमंत्री को गांव के लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी का एक ट्यूबवेल है वहां से गांव को सप्लाई हो रही है, वो कितने लोगों को मिल रहे हैं। और मुझे ये भी याद है कि जब गांव में कोई टैंकर आता है तो उस बार, उस समय लोगों के होड़ के बीच में उस बाल्टी की क्या हालत होती है, उस पानी की क्या हालत होती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केवल बातों में नहीं रहना चाहिए, इसको धरातल में लोगों के लिए उस सरपंच जी की जिम्मेदारी है कि वो पानी का इंतजाम करें। अब सरपंच जी ही बताएंगे कि वो क्या अभी भी 2-3 महीने का इंतजार कर रहे हैं, जब तक ये भीषण गर्मी खत्म हो जाए तब ही अपने गांव वालों को पानी का प्रबंध करके देंगे।
3: नहीं नहीं, वो उन्होंने भारत जी शायद आप सुन नहीं पाए, मैंने मनोज जी मैं करता हूँ स्पष्ट, मनोज भारत जी आप शायद सुन नहीं पाए, उन्होंने ये बता दिया, थोड़ा सा चित्र साफ कर दिया। वो उन्होंने बताया कि जिस दौरान नलकूप खराब हो गया उस दौरान एक किसान के ट्यूबवेल को हायर करके पब्लिक हेल्थ के तंत्र से जोड़ के पानी तो दे ही रहे हैं लगातार, और नया नलकूप जो रिप्लेसमेंट के तौर पर लगना है उसका टेंडर अलॉट हो गया है, यानी ठेकेदार को काम दे दिया गया, वो लग जाएगा।
0: परंतु सरपंच जी ने ये नहीं बताया कि वो चाहे किसी भी ट्यूबवेल से पानी आए, वो नल से जल घर हर घर में पहुंच रहा है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। अगर वो नल से जल पहुंच रहा है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी नलकूप से आए या दूसरे या तीसरे से आए। मकसद ये है कि जब हमें ये जिम्मेदारी दी गई तो गांव के लोगों के नल से जल पहुंचना चाहिए। वो कहां से आए वो सरपंच जी की जिम्मेदारी है, वो चाहे किसी जमींदार के नलकूप से ले आए या एक और जब तक बनेगा तब तक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत ये है कि हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए।
3: इन्होंने ट्यूबवेल को, प्राइवेट ट्यूबवेल को पब्लिक हेल्थ की मदद से उसी तंत्र से जोड़ दिया भारत जी, उतना तो कर दिया इन्होंने। इनका इस मामले में बचाव हो गया, नहीं तो आज ये फंस गए थे, हमारे हत्थे चढ़ गए थे, हमने यहीं के खिलाफ आंदोलन कर देना था।
2: आप जी प्रैक्टिकल जनता को रोकना हस्ती मखान नहीं है। पानी के मैंने साथ में एक भी जनता ना कोई प्रेस में गई ना मीडिया में गई, उनको हर तरीके से संतुष्ट करके रखा है।
0: जी जी,
2: पानी के बगैर दिया है।
0: अच्छी बात है मनोज नाथ जी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदारी हमें मिले उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। और मुझे इससे थोड़ी पीड़ा हो रही थी, इसलिए मैं इस तरीके से मैंने आपसे ये प्रश्न किया, आपकी जिम्मेदारी पर शायद मैंने सवाल उठा दिया। कारण उसका यह है कि आप उस गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, किसी को भी कोई तकलीफ हो वो तकलीफ आपकी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने आपको गांव का संरक्षक बना दिया है इस वजह से। जी जितेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: सर, पानी के समस्या की जो बात हो रही है तो मैं उसी पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। वैसे डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी ने सारी बातें सार्वजनिक की हैं और बताई भी हैं। भारत जी ने जो कहा कि भाई आप सरपंच है गांव के तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए, भारत जी सरपंच साहब का कहना यह है कि उन्होंने 7 महीने से दूसरा जो ट्यूबवेल है उससे वो पानी का जो हमारा घर घर पहुंचाने का अभियान है वो पूरा कर दिया।
0: जी वीरेंद्र सर,
3: देखिए मैं यहाँ फिर से कहूंगा जो बात इन्होंने अपने बचाव में कही है ना सरपंच साहब ने, वो ठीक है। पानी वास्तव में ऐसी चीज है, पानी और बिजली, इस मौसम में बिजली को भी शामिल कर लें आप, कि अगर वो आपको 15 मिनट ना मिले, आधा घंटा ना मिले तो लोग ही आपको जीने नहीं देंगे, और जीने देना भी नहीं चाहिए। वो सरपंच के गले पड़ेंगे, वो जेई के गले पड़ेंगे, वो एसडीओ के गले पड़ेंगे, वो विधायक के पास पहुंचेंगे। जागरूक हैं लोग, और जागरूक ना भी हो तो जरूरत जागरूक बना देती है साहब।
0: जी सर,
3: पानी न मिले और गर्मी का मौसम हो, बिजली न मिले और तापमान 43-45 डिग्री हो, तो फिर बिजली कहाँ से आती है सबको मालूम है, और किसके घर के आगे नारे लगाने से बिजली आएगी, किसके फोन खड़खड़ाने से बिजली आएगी, ये सबको मालूम है और लोग कर लेते हैं। खैर, मुझे एक बात और पूछनी है, चलते चलते कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव पर हैं।
0: मैं सर, बिजली की आपने बात की, मैं आपको अंबाला की एक बात बताना चाहूँ जो आज के समाचार पत्र में भी लिखी थी।
3: जी बिल्कुल,
0: अंबाला में 24 घंटे बिजली रहती है, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, मीन्स मैं कस्बे की बात कर रहा हूँ, बिजली रहती है। और कल रात को हमारे यहाँ पर बहुत सारे बिजली के कट लगे, और 24 घंटे में अंबाला के जो एक मंडल है उसमें 4216 शिकायतें आई। तो लोग जागरूक है, पर हमें यह भी समझना होगा जहां पर बिजली की खपत 10 गुना बढ़ती है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें भी समझना चाहिए कि जो सिस्टम्स है अगर वो गर्म होते हैं उनको आराम देना, उनको रेस्ट देना भी जरूरी है ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई नुकसान ना हो। ये सारी चीजें तो है, टाइमली अगर एक घंटे का कट लगा रात को तो वो हो सकता है, पर अगर किसी गांव में पूरी रात लाइट ही ना आए तो वो दुखद है। तो कहीं ना कहीं हम सबको इन समस्याओं के साथ चलना है, जब सही समय है तब तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन हमारा सामुदायिक रेडियो भी अगर 4 घंटे से ज्यादा लाइट चली जाएगी तो हो सकता है कि हमारा प्रसारण भी बाधित होता है, पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। पर हमें ये जरूर समझना है कि इस समय जो बिजली की खपत है वो 10 से 20 गुना तक बड़ी है, तो कई बार जो हमारी बिजली भेजने वाले हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। प्लीज सर, कुछ मिनट हमें रह गए हमारे कार्यक्रम में। जी प्लीज सर,
3: पीएम सूर्य घर योजना इसके तहत ललियाणी में कुछ लोगों को की छतों पर सोलर पैनल नजर आने शुरू हुए हैं कि नहीं मनोज जी?
2: हाँ जी बिल्कुल जी, 5-7-10% मतलब कई घरों में ये प्रधानमंत्री सूर्य योजना का तहत सोलर सिस्टम लगने का कार्य चला है।
3: अच्छा, आपके गांव में देसी गाय, आपके गांव में देसी गाय कितनी बची हैं?
2: देसी गाय 10-12 गाय देसी गाय होगी
3: बस कुल मिलाकर।
2: हाँ जी हाँ जी, बाकी मैं गौशाला अपना करनाल में बनाई हुई है, वहां पर गौशाला का मैं प्रधान भी हूँ।
3: हम तो ये चाहते हैं कि ललियाणी के हर घर में देसी गाय होनी चाहिए, आदर्श स्थिति ये है। इसके लिए भी कुछ उपाय करिए। भगवान दास जी जो हमारे विधायक हैं नीलोखेड़ी के, उनके प्रयास से गांव में क्या क्या काम आगे बढ़े हैं, अगर उनको कोई श्रेय देना हो कि भगवान दास जी आपने करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, कितना सहयोग मिलता है हमारे विधायक महोदय का आपको?
2: बिल्कुल, जो सामुदायिक भवन जो हमारे गांव में गिफ्ट मिला है ना, जो ब्याह शादी पैलेस की तरह जो बना हुआ है, वो हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपाल जी के द्वारा बनाया हुआ है। 2015-20 के बीच में वो मतलब आधा तैयार हो गया था और इस प्लान में वो कंप्लीट हो गया है। भगवान दास जी हमारे कबीरपति के द्वारा जी,
3: तो वो उनके इंटरवेंशन या उनके सहयोग से बनकर तैयार हुआ है, ये आपने अच्छी बात बताई। ग्राम सचिवालय है आपके पास?
2: ग्राम सचिवालय है और वो 2002 का बना हुआ है।
3: कभी बैठते हैं आप वहाँ? आपने दफ्तर दफ्तर खोल रखा है कि नहीं?
2: हाँ जी हाँ जी, वहाँ बैठते हैं जी कभी कभार जी,
3: कभी कभार। बस आज के कार्यक्रम का जो सार है और संदेश अगर देने के लिए मुझे कहें इस कार्यक्रम के संचालक के रूप में भारत जी, तो मैं अंतिम पड़ाव पर इस कार्यक्रम के आज के इस आज के राम राम हरियाणा के आखिरी चरण में प्रीतम जी से उनकी मुस्कान वापस मांगते हुए, जितेश जी के समर्थन की आशा में और गुरविंदर जी के भी चमकने की उम्मीद में ये कह रहा हूँ आखिर में चलते चलते कि हरियाणा की सरकार ये चाहती है कि हरियाणा के गांव की सरकार अर्थात हरियाणा के गांव की पंचायत वो ग्राम सचिवालय से चले। अगर नायब सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय से हरियाणा का शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, वहां बैठकर आदेश पारित करते हैं, वहां बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समाधान करते हैं, जन कल्याण की योजनाओं का ऐलान करते हैं, उनको लागू करते हैं, तो ललियाणी समेत हरियाणा के हर गांव की सरकार अंततो गत्वा गांव के सचिवालय से चलनी चाहिए। गांव का सचिवालय ऐसे केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए जहां सरपंच बैठे, जहां पंचों के बैठने का स्थान हो, जहां चर्चा और विमर्श के लिए कॉन्फ्रेंस रूम हो, जहां अटल सेवा केंद्र छोटा हो, जहां बिजली के से जुड़ा अगर कोई कर्मचारी गांव में तैनात है वो भी बैठा हो, संभव हो तो बैंक का परिसर भी उसके नजदीक हो, यानी क्षमा करिएगा, गांव के लोगों को सरकार से जो काम होता है अपने गांव की सरकार से, उसके लिए उन्हें अलग अलग दिशा में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सबके सब एक छत नीचे हो, ये सरकार की नीति है और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे नए ग्राम सचिवालय बने हैं, हाँ मैं कहता हूं अभी सारी जगह नहीं है, जहां हैं लेकिन वहां पर अगर सरपंच अपने ग्राम सचिवालय में नहीं बैठते तो गलत कर रहे हैं साहब जी। आज इतना ही कहना है और 17:00 हो गए हैं जी। मैं समझता हूँ अब भारत जी आज के कार्यक्रम को विराम देने के लिए सबसे राम राम कहलवाई लेंगे।
0: मैं सर जरूर कहना चाहूंगा, पहले प्रीतम जी और जितेश जी और गुरविंदर जी राम राम हरियाणा करें और आखिर में मैं इसका समापन करूंगा जी। प्रीतम जी,
6: भारत जी, मैं सभी को बता रहा, जो लाइट की जिक्र चल रहा था ना, हमारे यहाँ एक घंटा हो गया लाइट नहीं है। ये पूरा प्रोग्राम मैंने ऑफिस में बैठ के बगैर लाइट के और किया है, तो मुझे पता है कि गर्मी का क्या हो रहा है आज। और मेरे गांव में भी कल पूरी रात लाइट नहीं थी
0: जी।
6: और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को राम राम कर रहा हूँ सर
0: जी। गुरविंदर जी,
1: बिल्कुल सर,
5: आज के जो हमारे प्रोग्राम में सभी रेडियो स्टेशन जो जुड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर आपकी नजर में कोई पंचायत है, अब ये ना हो कि हम ही मतलब जोड़ रहे हैं पंचायत, जैसे ये मोरना जी जुड़े हैं, इनको जोड़ने का मेरा मकसद एक ही था कि हम ऐसा नहीं कि 80 पंचायतों को जोड़ो, मतलब जो पंचायतों कोई समस्या है ना उनको भी लेके जहाँ आए, क्यों जो एक सरपंच है वो 2000 वोट का प्रतिनिधित्व करता है, अगर जहाँ पे किसी की समस्या का समाधान होता है तो हम 2000 जो लोग हैं उनकी हम समस्या का मतलब समाधान कर रहे हैं जहाँ पे बैठ के। तो आपसे भी मैं एक प्रयास करता हूँ कि अगर नजदीक में कोई पंचायत है जिसमें कोई समस्या है उसको भी आप मेरे को बता दीजिए, हम उसके संपर्क करके उसको भी जोड़ लेंगे।
0: गुरविंदर जी, सोमवार को जो सरपंच जुड़ेंगे मैं बात करूंगा और मैं ग्रुप में कंफर्म करूंगा कौन जुड़ने वाले हैं। जी जीतेश जी,
5: वो मुझे पहले बता दीजिए, हम उसको जोड़ लेंगे।
0: जी जीतेश जी,
1: बिल्कुल सर, आज का जो हमारा राम राम हरियाणा एपिसोड रहा बहुत अच्छा एपिसोड रहा, और मैं गुरविंदर जी जो कह रहे हैं उनकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। हमारा राम राम हरियाणा जो कैंपेन चलाया जा रहा है सारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन और पंचायती राज संस्थान नीलोकेड़ी के द्वारा, तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जन जागरूकता लाई जाए, ग्राम पंचायतों को अपने साथ जोड़ा जाए, उनसे सीखा जाए और उनको अपने अनुभव उनके साथ साझा किया जाए। राम राम हरियाणा
0: जी। आखिरी टिप्पणी मैं मनोज नाथ जी को साधुवाद देता हूँ कि जो भी उन्होंने सवालों के जवाब दिए दिल से दिए, और मैं मनोज जी को ये कहूंगा कि जब भी आप गांवों की भागडोर आगे की ओर बढ़ाएं, एक इंसानियत के नाते बढ़ाएं, कोशिश करें कि हम अलग अलग दिशाओं में ना जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, और जो संस्कृति हरियाणा की है, जो सपेरा समाज से आप जुड़े हैं, उसको कहीं ना कहीं जो भी उस काम के साथ जुड़ जाए उसको वो अपनी जो हमारी जो जो कार्य है उसको जारी रखें, वो विलुप्त ना हो जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि मनोज जी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और वो कुछ सीख यहाँ से लेके जाएंगे, और साथ में अगली मीटिंग हम आपके सचिवालय से करें। तब तक और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सभी हरियाणा वासियों को राम राम हरियाणा।
3: राम राम, राम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: पंचमहल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: रेडियो विद स्टार 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विद स्टार। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: इश्क है। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2, कलाम भारती रैना, पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
3: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शाम गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैनावारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

सांसें भी उदास, दिल भी है बेकरार। जिंदगी के सफर में कुछ तो है यार, हर कदम में ठोकर खाए मगर फिर भी मुस्कुराहट से आगे बढ़े।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारतीय रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक है बाबुल। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत महफिल में, जहां अल्फाज रोशनी बनके चमकेंगे और सुरों की बारिश यादों को गीला करेंगी। ये है रेडियो वितस्ता 90.0 FM, जहां हर एहसास एक गीत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। चलिए शुरू करते हैं एक नए रेट्रो हिट्स का अंक, बाबुल। बाबुल, बाबुल एक बहुत गहराई भरा शब्द है जो बेटी की विदाई, पिता का प्यार और घर छोड़ने का दुख बयां करता है। वो जो छोड़ा था मैंने आंगन, आज भी यादों में महका करता है। ढल गया आंगन का सूरज, अब अंधेरा छाएगा। बाबुल की लाडली बेटी एक दिन पराई हो जाएगी।
1: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तू

मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।

हर गीत एक नया मोड़ लाती है, हर याद एक नए इंतजार की दस्तक देती है। आज की महफिल यहीं तक, पर कहानी अभी बाकी है। फिर मिलेंगे नए सुरों नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक था बाबुल, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्ते दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अपनी पसंद के चंद नगमे सुनवाएंगे। हमें उम्मीद है हमारी पसंद आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपका मेजबान रमेश मराठा।

हम हैं यहाँ मुसाफिर, चलते हैं बेदर्द मौसम में अपनी अपनी मंजिल की तलाश है। शायद कभी मील के पत्थर को छूते और तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरते, तुम श्री के सफर बन पाते। पर यह राहें हैं दुश्वार और पथरीले, इन पगडंडियों में फिसलन है। और अब ये रास्ते गीले हो चुके हैं।

0: एक एहसास है। मोहब्बत एक एहसास है, खुशबू की तरह। सिर्फ इसे महसूस करने की जरूरत है। इन बुझी हुई महफिलों में शायद ये रौनकें यूं ही बरकरार रहें, गर वक्त से पहले तुम लौट आओ। तुम अक्सर कहा करते थे, लौट आऊंगी, फिर से तुम्हारे आगोश में पनाह लूंगी, और एक साथ मोहब्बत के एहसास को महसूस करने की हम दोनों कोशिश करेंगे,
1: तुम जो मिल गए हो,
0: ताकि अधूरे वादों को निभाकर हम इन्हें पाए तकमील तक पहुंचा सके। यही मेरी रब से इल्तिजा है।

जब तुम लौट आओगे हमारी दुनिया में, ये हवाएं फिजाएं इन कपकपाती धड़कनों को हम संभाल लेंगे। यरकानी पत्तों के इस मौसम में अपनी मखमली दुआओं से बज्म इलाही में शायद हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद सुनी जाए। हमने ये भी सुना है रब यही बसता है और उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं।

पास होती साथ साथ, शायद फुर्सत में हम तुम्हें चाहते, पर काश फुर्सत होती दीवानेपन की हदों को दरकिनार कर ऐसा ख्वाब अपनी आंखों में बसाने से क्या हासिल जिस ख्वाब की ताबीर न हो। मिला तुमसे जो भी वो खामोश पानी की लकीरें जैसे ही है।

सरसराहट, रुखसार पे मुस्कुराहट, अन सुलझे सवालात, शब रोज ख्वाबों में दस्तक देना, पथरीले रास्तों को हरा कर मुझे मेरे भटकाव से मुक्त करना, यही तेरा एहसान था, तुम्हारा करम, तुम्हारी नवाजिश थी।

दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि बात वही करें जो आपसे सरोकार रखती हो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:20। सभी श्रोताओं को FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता सुनने वालों को, तमाम श्रोताओं को भारत सोपोरी का प्यार भरा नमस्कार। वक्त हो चला है हमारे आज के खूबसूरत सफर को यहीं पर एक विराम देने का। सुबह से लेकर अब तक शुरू गीतों, कहानियों और जानकारियों का जो कारवां आपके साथ चला, उम्मीद है कि उसने आपके दिन को बेहद खास और खुशनुमा बनाया होगा। आज विशेष चर्चा करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के ऊपर। श्रोताओं, आज का ये सफर थामने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और गर्मागर्म जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आज 22 मई है। वैसे तो दुनिया के कई हिस्सों में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, लेकिन कई देशों में और संस्कृतियों में आज यानी 22 मई को भी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में विशेष मनाया जाता है और मान्यता भी इसकी प्राप्त है। ये दिन दुनिया भर के उन लाखों चाय उत्पादकों, बागान श्रमिकों और किसानों को समर्पित है जो कड़ी मेहनत करके हमारे सुबह के कप में खुशियों का स्वाद घोलते हैं। चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये हमारी सुबह की शुरुआत है, अपनों के साथ गुफ्तगू का जरिया है और थकान मिटाने का एक जरिया है। रेडियो वितस्ता की ओर से उन सभी मेहनतकश चाय उत्पादकों को हमारा नमस्कार और सैल्यूट। तो ये एक विषय है जिस पर हम बहुत समय तक बात कर सकते हैं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हम भी जब चाय बागानों में गए हैं, एकदम हरे भरे चाय के बागान होते हैं, एक एक पत्ता काट के तैयार करके उसको सुखाया जाता है, देन उसके बाद ये एक फैक्ट्री में जाता है जहां पर ये कई सारे मरहलों के बाद डिब्बे में बंद होके हमारे तक चाय पहुंचते हैं जो हम अपने मॉल से, दुकान से ले आते हैं। और सुबह सुबह जब हम चाय बनाते हैं तो वो चाय की पत्ती जो उसमें डलती है, चाहे एक चम्मच चाहे दो चम्मच, पर उस एक चम्मच में चाय की जो पत्ती है उसको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, कटने से लेके, सुखाने से लेके और पैकिंग तक। तो उम्मीद करते हैं कि हम हर एक श्रमिक को जो भी अलग अलग कार्य करता है उनका हम अभिनंदन करें, उनका हम स्वागत करें और उनकी मेहनत को हम सैल्यूट करें। श्रोताओं, आप घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम आपसे विदा लें। आज की खूबसूरत शाम और रात को शब्दों के धागे में पिरोते हुए बस यही कहना चाहूंगा, दिन ढल गया है, रात की चादर बिछने लगी है। दिन ढल गया है, रात की चादर बिछने लगी है, तारों की महफिल भी अब सजने लगी है। कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर, नए सुरों के साथ FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। अब विदा दीजिए, घड़ी आराम की कहने लगी है। अब विदा दीजिए, घड़ी आराम की कहने लगी है। आप अपना फीडबैक हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारे स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। कल 23 मई 2026 को हम जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। 5:58 पर वंदे मातरम से हमारी सभा की शुरुआत होती है। लाते हैं आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 6 बजे भक्ति संगीत आप सुनेंगे। 7 बजे होगा रेट्रो हिट्स कार्यक्रम एपिसोड 1, पेश करेंगे आज ये किरनी। और 8:30 बजे किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 17, शादी कब स्वयं निर्णय ले। 9:30 बजे नारी एक दर्पण एपिसोड 2 पेश करेंगे आज ये सेजल। और 10:05 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 9 हमारे साथ होंगे सुरेंद्र कुमार। संगीत की सभा जारी रहेगी और 7 बजे सरगम एपिसोड 8
और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। काल की कड़ी है रूहों रूह किस रूह का सफर रूहों के साथ। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। रेडियो विदस्ता 90.0 MHz की पूरी टीम की ओर से आज के लिए अब चाहिए इजाजत। अब सब स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रख लिए और सुनते रहिए रेडियो विदस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। भारत सोपोरी आपसे कह रहे हैं शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।